读特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。

인도 델리 광보 딘타이 탱중 방역은 신선원 보송 아베다 바빈 창더 이쇼 거취

Shotin Sukhvinder He Shankar Mahadevan 唱的一首歌曲

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

मौजूदा कंडिया तुद्बद सरकन स्केमा विकसित भारत ग्राम जी पक्षिवराज सिंह मंचा तद्भावा दिवा कपमिंपिनान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पमरिंतांच्या सुडा मंग आयोकासिकान दाना यपितरी रुपेर संविधान प्रयोजी वारी बुक्रोर दयम अंगारान नगर गुना मंचिप्तकन यपंगन कर्जा मजुरी स्केमायनी या मनांबाकन बाबा पमरिंता नगर नगर भागियान जुगा सुडा मन्यांजेकन आयोग सिद्धानंदयम अंगरन मासिंग मासिंग जमी पर्यक्षणकन प्रोग्रामिनी जनतोताय आयोग से गबुंगन दरी पमरिंता इंडिया मापुन पमरिंता नगर भागियान अखन मयम पाई अंका सरतुस यमापुयु सत्तु रिबुक्रो रुपीच Mantari India.

ममते दी इंडिया उन तू पता नहीं अन कसो जाते दन पता नहीं डन पम्बंग नन पदसन मन्या तकन बा पम बेहदन कपड़ा पदा पकड़ जाकन दीजागु कन मजूरी ट्रांसफर मान फात जंग सुंग अतव डीबीटी को रेकनिंग बैंक अतव कंतर पस मरे का मिसकीपु तुजुआन्या अकन हरुस मम प्रोसेस पम बेहदन दयम अक्तु तिगहरी ससदन उपन उत्तमान्या हरुस ममस्तिकन बाबा समूह प्रसिजु तरसयसेकन जनदाना तसबुत संपाई को रेकनिंग मरे का दयम कुदुन अक्तु मक्सिमा यिमा बजासारी पाक सेवादार सिंह मन्यातकन बाबा जिका पकरजान तिड़ा टीस सड़ियाकन ससुड़ा अड़ान्य पदमिंतान तुंजुकन पन पंगंगुआन जुगा वजीब डिबैरकन संबादी मन डेस्क्रिप्शन हाज इन्हीं सब के इसके मां कंप्रिहेंसिव यंग डिडंचंग डेमी का सहजतरन पर पकड़ या मंचतर बा पकड़न पमंगनन इंफ्रास्ट्रक्चर डी देश देशा कन डी यक्षन कन दयम स्कजब सर डी जुकुंग ये अयोकसी अंगदन तहनन यंग मोये भी सदातुस यमपुजु सत्तु दिबु कुदोजु पीछ या अभियान जुत मन्य तकन बा इनिशिएटिव इनिया कन ममुडा कन पकजन पकजन एसेंशियल सपर्ति कंजर्वेशन आई पंग बंगुनन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शन जयन जंबतन गदंग गदंग सकया जन गेडुं अंगनवाड़ी दिबावा चकुपन को ज्ञातन यंग मंग हसई कन मता पंचार्यन फसिलिटस इंफ्रास्ट्रक्चर सपर्ति तम पतकजा अतः वर्किंग सेट्स मगी पदंगता पदंपन दादी कयम पक्षोदय अतो एस हा गे जन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसन पतनी अतो एफ पे ओ जुगा दपा दिबंगु सजाइन इतु गुना ममिति का सिद्धांपक बंचना यम पक जन सपति पमंगुनन डिंडिंग पनहन डी दस दस तेपी सुन्नई अतो एरिया यंग तदगनं आई जुगा दपा डिजक्सनकन सबगे बग्यन दिसके माइनी मंतरी इंडिया पक चौहान मंग एक्सप्रेसिकन को यकीन अन्य बाबा हाल इन्हें मनन जाए डी मुझे ने एराबारु दजम को हिडुपन पद पकड़ जा जन बावस के मायने अगन तद्भुक्ति मंजारी तंका पंतिंग दजम मो उजुड कन तकर उन्तु पम मंबंग दस दस माजु सब गए फंडासी बागी विकसित भारत अतो इंडिया यंग माजु सकियन डोमिकियन तारी कमेंटाज सौडा सौडा पन्नगर किता मसी वसमदन सेदन नदरियो इंडिया दजम अचरा सयंजुत ने इकुतया यगु रेक्य ददिदेदा जम्मू दन कश्मीर निगमतया

0: Itu tadi aku dekat. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara itu tadi aku dekat dari negara bagian atau itu tadi aku dekat dari Uyayuni, Jammu dan Kashmir di India Utara. Harapannya sudah nikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight. Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Sonu Sood, and today our topic of discussion is Somnath Amrit Mahotsav, celebration of India's cultural spirit and national pride. And to discuss this important issue, we have with us senior journalist Praful Ketkar. Before we start the discussion, we'd like to share that Prime Minister Narendra Modi today participated in Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored Somnath Temple in Gujarat. Addressing a grand gathering at the Somnath Temple complex on the occasion of its 75th consecration anniversary, Prime Minister hailed the event as far more than a ceremonial occasion, but rather a declaration of India's eternal consciousness and civilizational resilience. Let's listen in to what the Prime Minister said in his own words.
2: 75 saal pehle, aaj ke hi din, Somnath Mandir ki punarsthapana, ye koi sadharan avsar nahi tha. अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था. आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था. तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार

0: शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में, जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ

0: उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमोल तांबे ने सब डिवीजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ातरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے چھتیس گڑھ میں نکسلیوں سے اسلحہ دھماکہ خیز مواد اور 1 کروڑ نقد برآمد. اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے بھارت نیپال سرحد پر دراندازی کی کوشش

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आइए सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग अलहैया बिलावल में। तबले पर संगत कर रहे हैं जी जी भारती।

دوستان عزیز، ترانه بعدی اکنون پخش میکنیم. گوش بفرمایید.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को

पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर आंगन।
1: नमस्कार। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी एक स्क्रीन होती तो उस पर क्या चल रहा होता? रफ्तार, जिम्मेदारियां या थोड़ी सी थकान? तो चलिए अगले 50 मिनट तक के लिए उस स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करते हैं और कनेक्ट होते हैं खुद से, अपनों से और जिंदगी के जज्बातों से। आप सुन रहे हैं ना, तो घुमाते हैं पहिया कार्यक्रम घर आंगन का और इन लम्हों में आपकी सारथी बनी हूं मैं, श्रुति पुरी। ये समय है दोपहर 12:10 का और अगर 1 बजे तक भी आपको लगे कि आपकी कोई बात, कोई अनुभव या कोई सवाल इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए तो हमें लिखिए fmgoldgia@gmail.com पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज़ जुड़ती है उस सफ़र से जो हमें आप तक ला रहा है। FM गोल्ड 100.1 MHz पर, इंद्रप्रस्थ पर आप हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz और DRM 810 KHz पर, और हमारा डिजिटल परिवार हमें सुन रहा है AIR न्यूज़ लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कार्यक्रम के रथ को आगे बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव संजोते हैं इस गीत के साथ। हम जोली फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

और श्रोताओं, अब समय है सुविचार का। आज के सुविचार को हो सकता है कि आप भी शायद मेरी तरह पसंद करें। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसान पूरे मन से मेहनत करे और हार न माने, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। कई बार जीवन के रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेता है। सफलता पाने के लिए हौसला, मेहनत और विश्वास बहुत जरूरी है, और जरूरी है अपनों का साथ या उनके साथ होने का एहसास। प्यासा सावन, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, भारत के इतिहास और साहित्य जगत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। आज पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती है, जो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और राष्ट्र सेवा की याद दिलाती है। आज ही के

दिन भारतीय अंग्रेजी साहित्य को नई पहचान देने वाले लेखक आर के नारायण की पुण्यतिथि भी है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। उनका व्यक्तित्व सौम्य, सरल और जनसेवा के प्रति समर्पित था। उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आर के नारायण ने अपनी लेखनी से भारतीय जीवन, छोटे शहरों की संवेदनाओं और आम लोगों के अनुभव को बेहद सहज भाषा में दुनिया के सामने रखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मालगुड़ी डेज विशेष रूप से लोकप्रिय रही। उन्होंने भारतीय कथाओं को वैश्विक पहचान दिलाई। श्रोताओं, कुछ लोग अपने पद से बड़े होते हैं और कुछ अपनी प्रतिभा से। फखरुद्दीन अली अहमद और आर के नारायण दोनों ही इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इंतकाम फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: ऐसे होते हैं जो वर्षों बाद भी अपनी आत्मीयता और प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। आकाशवाणी और उसके श्रोताओं का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारतीय जनजीवन की स्मृतियों, संवेदनाओं और संवाद का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गांव से शहर तक, युवा से वरिष्ठ तक और समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुँच है। विशेष रूप से दिव्यांग जन के लिए आकाशवाणी ने हमेशा एक ऐसे साथी की भूमिका निभाई जिसने उन्हें सूचना, मनोरंजन, साहित्य, संगीत और समाज से निरंतर जोड़े रखा। इसकी सहज उपलब्धता, सरलता और विश्वसनीयता ने इसे दिव्यांग जनों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आइए सुनते हैं कि क्यों ये माध्यम आज भी दिव्यांग जन की पहली पसंद बना हुआ है। ये है हमारी दिव्यांग श्रोता अंजलि।
1: मेरा नाम अंजलि है। मेरी दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया को मैं देख नहीं सकती। मेरी दो दुनिया रेडियो है जो मैं हमेशा सुनती आई हूँ और सुनती रहती हूँ। इसके प्रोग्राम मुझे बहुत ही मन लुभावने लगते हैं क्योंकि दृष्टिहीन होने के कारण मुझे इस दुनिया की चकाचौंध दिखाई नहीं देती, लेकिन जो प्रोग्राम आते हैं उन्हें मैं सुन के मुझे खुशी का अनुभव होता है। टीवी या और कुछ हम देख नहीं पाते, इसी को सुनकर, इसकी कहानी, मनोरंजक प्रोग्राम सुन के मन को बहुत ही प्रफुल्लित होता है। अधिक खुशी जब होती है जब आकाशवाणी से हमें कहा जाता है कि आप अपने विचार बताइए, तो बस यही शब्द रह जाते हैं कि काश अगर दृष्टि होती तो हम दुनिया को देख पाते, लेकिन कानों से सुनते हैं तो उसी को मनोवित कर लेते हैं कि हमें सब कुछ दिख रहा है।
0: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने कभी अपने श्रोताओं के बीच कोई भेद नहीं किया। सभी तक समान रूप से पहुंचने और उन्हें जोड़ने की क्षमता ही इसकी असली ताकत है। दिव्यांग जन के लिए ये माध्यम केवल कार्यक्रम सुनने का साधन नहीं बल्कि आत्मीय संवाद और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी रहा है। आइए बात करते हैं आकाशवाणी से जुड़े कवि दिव्यांग सुनील कुमार कर्दम से।
2: यूं तो आकाशवाणी से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। 90 के दशक में जब गांव में टीवी नहीं हुआ करते थे तब हम रेडियो पर अपने मन पसंद कार्यक्रम सुना करते थे। समय समय पर आकाशवाणी से सामाजिक संदेशों के अलावा नारी उत्थान, दिव्यांग जनों के कल्याण, देश प्रदेश की जानकारी देने वाले समाचार एवं गीत संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं, जिन्हें चौपाल पर बैठकर मैं और मेरे गांव की महिलाएं, युवा, बच्चे व बुजुर्ग ध्यान से सुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञान में वृद्धि करते रहे हैं। मैं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बचपन से अब तक अनवरत सुनता आया हूँ। कार्यक्रम सुनते सुनते मेरे मन के एक कोने में एक सपना पलता रहा कि मैं भी कभी न कभी आकाशवाणी पर अपना प्रोग्राम पेश करूं, और वो सपना अब तक कई बार

90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने लगातार ये साबित किया है कि सशक्त संचार वही है जो समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चले। दिव्यांगजन के जीवन में इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि आकाशवाणी केवल आवाज नहीं बल्कि संवेदनाओं का वो सेतु है जो सबको एक सूत्र में बांधता है। यही कारण है कि बदलते दौर में भी आकाशवाणी का महत्व और उससे जुड़ाव आज भी बरकरार है।

श्रोताओं, बचपन को तो आपने जिया ही होगा। थोड़ा सा बचपन ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा वो गुप्त कमरा है जिसे हम बड़े होते होते खुद ही बंद कर देते हैं और फिर जिंदगी भर उसकी चाबी ढूंढते रहते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, लेकिन बड़े होते होते हम वजह के बिना खुश होना ही भूल जाते हैं। जब हम खेलते हैं, हंसते हैं या बेवजह खुश होते हैं तो हमारा दिमाग वही केमिकल डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करता है जो बचपन में करता था। मतलब बचपन कहीं गया नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर एक्टिव मोड में है, बस हम उसे ऑफ करके बैठे हैं। कब आपने आखिरी बार बारिश में भीगते हुए सिर्फ बारिश को महसूस किया था, या फिर पतंग उड़ाते हुए आसमान को देखा था, या कभी बिना वजह हंसे थे इतना कि आंसू आ जाएं? थोड़ा सा बचपन जिंदा रखने के लिए बड़े बदलाव नहीं चाहिए। कभी अपने नाम के आगे से जी हटाकर सुना है? कभी सड़क किनारे गोलगप्पे खाते हुए ये सोचा है कि लोग देखकर क्या कहेंगे? मत सोचिए ना। कभी बिना वजह पुराने गाने पर झूम उठे हैं आप? बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलिए, खुद को उनकी उम्र का बना लीजिए और उनके साथ सहभागी बनकर हंसिए, खेलिए। कभी कभी बच्चों के कॉमिक्स पढ़ लीजिए, किताबों में छुपी मासूम कहानियों को महसूस कीजिए। कभी बच्चों के सीरियल या कार्टून देखकर मुस्कुराइए। उम्र कभी ये तय नहीं करती कि आपको जीना कैसे चाहिए, आपका मन तय करता है कि आप उम्र को कैसे जीना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बचपन जिंदा रखिए हर उम्र में, क्योंकि उम्र तो बस गिनती बढ़ाती है, जिंदगी नहीं। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म जंगली में।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ब्रेन विद ब्यूटी यानी खूबसूरती से जुड़े प्रोफेशंस के बारे में। आज के दौर में हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। कई क्षेत्र उभर कर ऐसे सामने आए हैं जहां खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्टनेस, संवाद कौशल और बुद्धिमत्ता सभी की बराबर भूमिका है। विशेष रूप से फिल्म्स, मॉडलिंग, टेलीविजन, फैशन और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों ने युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इन प्रोफेशंस में सफल होने के लिए केवल सुंदर चेहरा काफी नहीं होता। आत्मविश्वास, कैमरा प्रेजेंस, बेहतर संवाद अदायगी और रचनात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अभिनेता, एंकर, न्यूज प्रेजेंटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और इमेज कंसल्टेंट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं मॉडलिंग के क्षेत्र में फैशन मॉडल, कमर्शियल मॉडल, रनवे मॉडल और ब्रांड प्रमोशन एक्सपर्ट जैसे करियर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में परिधान डिजाइनर, सौंदर्य विशेषज्ञ, त्वचा देखभाल सलाहकार और केश सज्जाकार या स्वास्थ्य प्रशिक्षक जो होते हैं और पोषण विशेषज्ञ जैसे पेशे भी बहुत आजकल फेमस हो रहे हैं। आज कंटेंट क्रिएटर, ब्यूटी ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंसर बनकर भी लोग अपनी पहचान तो बना ही रहे हैं ना। यहाँ व्यक्तित्व के साथ साथ समझदारी, ट्रेंड्स की जानकारी और दर्शकों से जुड़ने की कला बेहद ज़रूरी है। हालांकि इन क्षेत्रों में आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसीलिए केवल आकर्षक दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार सीखना, अनुशासन बनाए रखना और अपने कौशल को निखारना बहुत ज़रूरी है। यदि सही दिशा, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास हो तो फिल्म, मॉडलिंग, टीवी और फैशन जैसे क्षेत्रों में आप नए नए सफलता के आयाम खोल सकते हैं। कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारी पहचान कपड़ों या हमारे काम से पहले हमारे व्यवहार से बनती है? एक कॉरपोरेट मीटिंग हो या किसी दोस्त की पार्टी, मेट्रो का सफर हो या किसी रेस्टोरेंट में बिताया गया समय, हर जगह हमारा पब्लिक बिहेवियर ही हमारी असली छवि पेश करता है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे समाज की एक बड़ी तस्वीर तैयार करती हैं। जब हम मेट्रो या बस में सफर करते हैं, तो क्या हम अपनी लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं? क्या हम उतरने वालों को पहला रास्ता देते हैं? क्या हम बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए सीट छोड़ते हैं? या क्या हम मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करने से बचते हैं? इसी तरह सड़क पर चलते या गाड़ी चलाते समय क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्या हम

छोटे फैसले हमारे सिविक सेंस को दर्शाते हैं। सच तो ये है कि एक अच्छा समाज नियमों से नहीं बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार से बनता है। एक मुस्कान के साथ धन्यवाद कहना, किसी को रास्ता देना, सफाई का ध्यान रखना और थोड़ी सी सहनशीलता दिखाना, ये सब छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। तो क्यों ना आज से हम खुद से एक वादा करें कि हम जहां भी जाएं अपने व्यवहार से एक सकारात्मक छाप छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है और यही बदलाव मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखता है। दोस्ताना फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

तो चलते चलते क्यों ना आज आई कुछ मेलों पर भी ध्यान दे लें। हमें एक मेल लिखी है नवीन भाटिया जी ने, कह रहे हैं श्रुति जी नमस्कार, आज काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी हैं आप, काफ़ी दिनों बाद सुनाई दे रही हैं, सब ठीक? तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी हूँ, बस हाँ कुछ दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। गौरीशंकर वर्मा जी लिख रहे हैं, श्रुति बेटा राम राम, प्रोग्राम अच्छा है, जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, तो धन्यवाद गौरीशंकर जी। सुदर्शन मुखी जी लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हम सुन रहे हैं, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, तो हम आपका दिल से आभार अभिव्यक्त करते हैं। हमें ऐसे ही मेल लिखते रहिए और अब हम अपनी इस महफिल को यहीं समेटते हैं, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहेंगे। तो मुझे यानी श्रुतिपुरी को दीजिए नमस्कार और फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी कार्यक्रम घर आंगन में।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही फिल्म में स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस कार्यक्रम में हम वक्त की जो सुइयां हैं उनको थोड़ा सा पीछे घुमाने वाले हैं और उस दौर में लेके जाएंगे जब सादगी में सारा जादू छिपा होता था। तो दोस्तों, बांध लीजिए अपनी सीट की पेटियां और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज पुरानी यादों के पिटारे से फिल्म निकली है, वो फिल्म जिसने ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर भी रंग जमा दिए थे। जी हाँ, आज हम बात करें सन 1955 की उस क्लासिक फिल्म की जिसने देवानंद के स्टाइलिश अंदाज और नूतन की सादगी को एकदम अमर बना दिया और उस फिल्म का नाम है मुनीम जी।

0: दी, हाँ ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर।
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: Saving करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
6: जी दोस्तों, आज की जो महफिल सजी है वो सजी है मुनीम जी के नाम। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि प्यार की राहों में अमर और रजनी का जो सफर है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। अमर और रजनी यानी कि इस फिल्म की वो खूबसूरत जोड़ी, अमर और रजनी यानी कि देवानंद और नूतन की जो केमिस्ट्री है वो पहली बार इस तरह से बड़े स्तर पर सराही गई। जी हाँ दोस्तों, मुनीम जी का अगर हम मुनीम जी फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद आएगा वो टेढ़ा सा हैट, आंखों में खास चमक और गर्दन झुकाकर बात करने का वो निराला सा अंदाज। जी हाँ, हम बात करें बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद साहब की, लेकिन हम उनके सिर्फ एक्टिंग की नहीं बल्कि उनकी फिल्म की भी बात करेंगे। वो फिल्म जो कि आज हम लेकर आए हैं मुनीम जी, जिसमें सस्पेंस भी था, रोमांस भी था और साथ ही साथ उसमें एसडी बर्मन साहब का संगीत जो आज भी हमारे कानों में घोलता है शहद।

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, एक ही फिल्म में। दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के पीछे बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं, सन 1956 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, तो इस फिल्म ने एक इतिहास रचा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में नूतन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जीता अपना पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। यही नहीं, ये उनके करियर की सबसे बड़ी उड़ान थी। जी हाँ, सबसे बड़ी उड़ान, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी छलांग थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन्हें इस फिल्म ने रातों रात बना दिया सुपरस्टार। और अगर हम बात करें इस फिल्म के गाने की, तो इस फिल्म के जो गीत हैं वो भी एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आपको मालूम है इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, इसके पीछे किसका दिमाग था? सुबोध मुखर्जी। जी हाँ, सुबोध मुखर्जी थे इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्हें जाना जाता था अपनी फिल्मों में ग्लैमर और सस्पेंस के लिए। और मुनीम जी की कामयाबी के बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, जिनमें जंगली और शागिर्द जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं।

जी दोस्तों, रेडियो के सफ़र को थोड़ा और आगे चलाते हैं। वैसे दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो जोड़ियाँ होती हैं वो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जो सिनेमा की जोड़ियाँ बनती हैं वो कभी कभी बहुत ही दिलचस्प इत्तफाकों से बनती है, और वही हुआ फिल्म मुनीम जी में देवानंद और नूतन का साथ में आना। जी हाँ, उन दोनों का किसी फिल्म में साथ आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल नूतन जी इस फिल्म को करने से ठीक पहले पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड चली गई थी, और उस दौर में किसी भी टॉप एक्ट्रेस का अपने करियर को छोड़कर पढ़ने के लिए जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस आई तो वो पहले से और भी ज़्यादा दुबली हो गई थी। जी हाँ, क्योंकि नूतन पहले से ही काफ़ी दुबली पतली, एकदम पतली सी थी, लेकिन जब वो वहाँ से आई तो और भी ज़्यादा पतली थी। तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी और डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी, उन दोनों ने, भाई उनको चाहिए तो अपने फिल्म में नूतन ही चाहिए थी, क्योंकि उनको एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो दिखने में मॉडर्न भी दिखे, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न होने के साथ साथ वो सादगी से भी भरी हुई हो। और नूतन जी का इस मामले में तो क्या ही कहना। जी हाँ, क्योंकि नूतन जहाँ अपने अंदर सादगी समेटे हुए हैं वहीं वो पूरी तरह से मॉडर्न भी थी। लेकिन अब आड़े आ रही थी यही चीज़ कि भाई ये तो बहुत दुबली पतली हैं, और अगर इतने दुबली पतली हमें हीरोइन नहीं चाहिए, और उनकी जो थोड़े से वो झिझक रहे थे उनको लेने के लिए, तभी सुबोध मुखर्जी ने भरोसा जताया और उन्होंने नूतन से कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके लिए जो कपड़े बनाएंगे वो इस तरह के बनाएं जिसमें कि आप थोड़ी बल्की लगें, थोड़ी मोटी लगें। और जब फिल्म में उन्होंने काम किया, जब उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, जौहर दिखाया, तो किसी की भी नज़र उनकी कद काठी पर गई ही नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि कोई भी उस चीज़ को देख ही नहीं पाया कि भाई वो इतनी दुबली पतली भी। और अगर हम बात करते हैं देव साहब के बारे में, भाई 1955 में जब ये फिल्म आई थी उस टाइम तक देवानंद साहब एक बहुत बड़े स्टार थे, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुबोध मुखर्जी जी और देवानंद साहब, उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब देवानंद का उस वक्त में काफ़ी अच्छा चार्म था, और वो एक मामूली मुनीम के रूप में आएंगे ये, और आकर के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, ऐसा थोड़ा सा उनको गलत लग रहा था। तभी देवानंद को ये आइडिया जो था उनका कि भाई आपको मुनीम बनना होगा, वो बड़ा पसंद आया, और उन्हें फिल्म में अपनी पहचान छिपा कर एक जासूस की तरह काम करना है, आप इस चीज़ को इस तरह से लें, ना कि ये सोचें कि मैं एक मुनीम बनूंगा। उन्होंने ना केवल इस रोल को अपनाया बल्कि नूतन के साथ इतनी गजब की केमिस्ट्री दिखाई कि लोग इस जोड़ी के दीवाने हो गए। और वाकई में इस कामयाबी के बाद देवानंद साहब और सुबोध मुखर्जी की जोड़ी ने आगे चलकर पेइंग गेस्ट जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह, अगर उस दिन सुबोध मुखर्जी ने इन दोनों सितारों को साथ में लाने का फैसला अगर नहीं किया होता, तो आज हम लोगों को इतनी खूबसूरत और इतनी गजब की ये फिल्म शायद नहीं मिलती।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। दोस्तों, इतनी देर से हम बता रहे हैं कि फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, तो हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अमीर परिवार से, जहाँ एक माँ यानी कि निरुपम रॉय के दो बेटे हैं, रतन और अमर। बचपन में बिछड़ जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और रतन जो कि बड़े होकर बनता है प्राण, बिगड़ैल और लालची, जबकि दूसरा बेटा बनता है अमर देवानंद, एक होनहार नौजवान। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमर एक मुनीम बन कर के, मुनीम का रूप धर के उसी घर में वापस आता है जहां पर रतन अपनी चाले चल रहा होता है। और इसी बीच एंट्री होती है खूबसूरत और चुलबुली रजनी की, रजनी यानी कि नूतन की। रजनी और मुनीम जी यानी कि अमर के बीच में नोकझोंक शुरू होती है और धीरे धीरे ये नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। लेकिन अब अमर को अपना हक भी पाना है, रजनी का दिल भी जीतना है, वो भी अपनी पहचान को छिपाते हुए। और मुनीम जी का असली जो मिशन होता है वो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि बेनकाब करना था उस शातिर विलेन को जो जायदाद हड़पने के चक्कर में था। फिल्म का अंत सस्पेंस इमोशन से भरा हुआ है, जब माँ अपने दोनों बेटों को पहचानती है और अमर अपनी चतुराई से बुराई पर जीत हासिल करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म मुनीम जी की, जिसने हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दिल का भी किया जाता है। इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। और ये जो संदेश हम तक आया है, इसको पहुंचाने वाले हैं स्वर्ण सिंह जी, और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, नीतेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद

पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, कमल पाठक गव्या मल्होत्रा के साथ। अगला संदेश आया है हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, निगत परवीन, शहनवाज फरदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी जी के साथ भेजा है इन्होंने अपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम गगनेजा ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागर राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू जुड़े हैं हमारे साथ जिला बालो छत्तीसगढ़ से, ग्राम भाईना पार लाटा बोर्ड से। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज हिमांशु सुधार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र वर्मा के साथ रतरंगी भट्टापारा से। संदीप मकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति मन्नत भारत के साथ, कमल साहनी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खाचे, आशीष महरेकर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश है उसको भेजा है हमारे हम तक बीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार ने। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा जी के साथ, अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक जी जुड़े हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से कैथल, हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने जानकारी हम तक शेयर की है। और भी हम तक बहुत से संदेश आए हैं जिसमें से ये संदेश देवशंकर तामुलिया जी का हमारे साथ में, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतिनगर सोनीपत से भूषण खेरा जी हम तक जुड़े हुए हैं। उषा मोहन, संजय ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन ढींगिया, पार ढींगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से। विजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय साहू जी पोटियाकला दुर्ग से हम तक जुड़े हुए हैं। बबलिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। लालगिरी जी हम तक जुड़े हैं। ईशाक मोहम्मद, अजीत भावसर जी, जगराम साहू, मुकेश बट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला जी, पटियाला से। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही फिल्म में, आज की फिल्म मुनीम जी, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली टीवी के हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडापड्डी पेलानी सामी की क्यादत वाले 22 AIADMK अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और पीएमके से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री

0: असामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।

0: श्री फ्रांसिस को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़,

हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के संगीतमय सफर में।

श्रोताओं, बात उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा के संगीत का गोल्डन पीरियड चल रहा था। हर तरफ लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज का जादू छाया हुआ था। ऐसे समय में किसी नई सिंगर के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसी दौर में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, और वो आवाज थी शारदा राजन अयंगर की। 25 अक्टूबर 1933 को चेन्नई के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये वो आवाज़ बनी जिसने 60 से 70 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी आवाज़ जो मासूम भी थी और चुलबुली भी। शारदा जी को बचपन से ही संगीत का शौक था, लेकिन इन्होंने कभी प्रोफेशनल सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था। इनकी आवाज़ पारंपरिक प्लेबैक सिंगर से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी तीखी, थोड़ा मासूम, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। इनका फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा

ये दिलचस्प है। दिग्गज राज कपूर साहब ने इन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में एक पार्टी के दौरान गाते हुए सुना था। राज कपूर की पारखी नजर के मालिक थे। इन्होंने शारदा को मुंबई आने का न्योता दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने बॉलीवुड संगीत के समीकरण बदल दिए। आगे इनके सिंगिंग सफर की बात करेंगे, उससे पहले सुनते हैं इनके डेब्यू फिल्म का सॉन्ग जो कि ब्लॉकबस्टर हुआ था और इस फिल्म का नाम है सूरज।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर शारदा जी की। दरअसल राज कपूर साहब के बुलावे पर शारदा मुंबई तो आ गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। राज कपूर ने इन्हें मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से मिलवाया। शंकर जी को शारदा की आवाज़ में एक फ्रेशनेस नज़र आई। उस दौर में जहां हर कोई मंगेशकर बहनों की शैली को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, शारदा अपनी ओरिजिनल आवाज़ के साथ खड़ी थी। इनका पहला बड़ा ब्रेक 1966 में आई फिल्म सूरत से आया। कुछ देर पहले मैंने आपको ये गीत भी सुनाया, तितली उड़ी उड़ के चली, रातों रात पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस गाने ने इन्हें उस दौर की सबसे बड़ी गायिकाओं के सामने खड़ा कर दिया था। इसके बाद जो तो शारदा जी को बहुत से प्रोजेक्ट्स मिले, जिसका इन्होंने

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी फिल्म की। तितली उड़ी गाना सिर्फ एक हिट सॉन्ग नहीं था, बल्कि इसने इतिहास रच दिया था। 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुछ

सॉन्ग और मोहम्मद रफ़ी के गाने के बीच इतनी कड़ी टक्कर थी कि फिल्म फेयर को एक स्पेशल अवार्ड की घोषणा करनी पड़ी। शारदा जी को रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए विशेष पुरस्कार भी मिला। इसके बाद तो जैसे इनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। चार साल बाद 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले के गाने के बाद बात जरा है आपकी सॉन्ग के लिए इन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और दोस्तों कुल मिलाकर इनको अपने सिंगिंग करियर में 4 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिल चुके थे, जो इस बात का सबूत था कि शारदा जी की वॉइस वाकई लाजवाब थी। इन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस, गुमनाम, सपनों के सौदागर, दुनिया और कल, आज और कल जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। इनकी आवाज़ का इस्तेमाल अक्सर उन एक्ट्रेस के लिए किया जाता था जो पर्दे पे थोड़ी चुलबुली या वेस्टर्न अंदाज वाली होती थी। चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये रोमांटिक सा सॉन्ग।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं शारदा रंजन और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर शारदा जी की। शारदा जी ने उस समय के लगभग हर बड़े सिंगर्स के साथ गाने गाए, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो, आशा भोसले हो, किशोर कुमार हो या मुकेश। इन्होंने हर किसी के साथ अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इन्होंने उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाने गाए, वैजयंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी, मुमताज़, शर्मिला टैगोर और रेखा जैसे स्टारर्स के फेस पर इनकी वॉइस एकदम फिट बैठती थी। और तो और, शारदा जी ने सिर्फ फिल्मों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने इतिहास भी रचा। ये भारत की पहली महिला सिंगर बनी जिन्होंने अपना खुद का पॉप एल्बम रिकॉर्ड किया। 1971

में इनका एल्बम सिजलर रिलीज हुआ, जिसे उस समय की मशहूर कंपनी हिज मास्टर वॉइस ने रिलीज किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शारदा जी ने म्यूजिक डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था? तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म नैना का ये गीत सुनने का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी जो कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके मेल आ गए हैं हमारे पास, मैं उसे पढ़ लेती हूं। ये हैं ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुनरूर, गुरलाल और अविराज जी, और संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और कमल सैनी, पिंगावाला चौक जालंधर से हैं ये, और साथ में है ये लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति के साथ उम्दा जानकारी मिली और बेहतरीन गीत सुनने को मिला, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावाकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण, राजकुमार आशीष, और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा और पूजा परिहार। और एक ही कलाकार में आज आप शारदा के बारे में जानकारी दे रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और ये हैं हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, सहनवास, फरीन सुहाना, अरजान और अब्बास अब्बासी, और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेल से मोहम्मद इस्तफाक, मोहम्मद असफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर आफरीन और खमीजा। ये हैं ऊपरकोट मोहल्ला मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, और ये है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया का, और ये है दंतरेगी से हीरामणि वर्मा जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि जब प्लेबैक सिंगिंग से थोड़ा समय मिला तो शारदा जी ने अपने प्रतिभा का एक और पहलू दुनिया को दिखाया। ये बॉलीवुड की उन शुरुआती महिलाओं में से थी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इन्होंने सत्तर के दशक के मिडिल में कई फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया। इसमें से था माँ बहन और बीवी, तू ही मेरी जिंदगी, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल और क्षितिज जैसी फिल्में शामिल थी जिसमें इन्होंने म्यूजिक दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बच्चों के लिए भी ढेरों कविताएं और गाने रिकॉर्ड किए क्योंकि इनकी आवाज़ की मासूमियत बच्चों को बहुत पसंद आती थी। म्यूजिक के प्रति इनका ये समर्पण दिखाता है कि ये केवल एक सिंगर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कलाकार भी थी जो समय के साथ खुद को ढालना जानती थी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनके फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ये गाना।

दोस्तों, 14 जून 2023 को शारदा जी हमें छोड़कर चली गईं। इनको कैंसर की बीमारी हुआ था, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। अपने अंतिम सालों में ये संगीत से जुड़ी रही। 2007 का एल्बम अंदाज़े बयां इनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट्स में से एक था। दोस्तों, शारदा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि म्यूज़िक समय से परे है। इनकी आवाज़ सुनकर आज भी मन प्रसन्न हो जाता है, और इसी वजह से ये हमेशा फैंस के दिल में अमर रहेंगी।

तो दोस्तों फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। लेकिन श्रोताओं आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत और गुनगुनाते रहिएगा संगीत।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा

0: महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खासतौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
1: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
0: जी।
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
0: जी।
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: ओ, अल्लाह अकबर।

0: bambino, assim na bem por isso. Só me larga a daga, churne gal que baga.
1: अब तेरी बारी है,
2: अब मेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
1: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
2: तो कहानी सुना दो भाई।
1: अच्छा ठीक है, गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
2: अच्छी कहानी थी। भाई कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
1: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
2: हाँ चलो चलो, वहाँ
1: चलो
2: पे पानी
1: होगा। चलते हैं।
3: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
4: कौन है?
2: दीदी,
4: कौन है?
2: दीदी।
1: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
2: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
1: हम थोड़ा पानी पी लें?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
2: हाँ, बड़ा ठंडा पानी था।
1: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
5: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
2: कौन है आप?
5: नहीं समझे?
2: नहीं।
1: नहीं।
5: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी
1: हाँ जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: शुरू हो जाती है हाँ।
3: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
3: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने

0: वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
2: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
2: दिखाओ ना, अम्मा दे
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
2: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
2: स्वाद है,
1: पसंद है,
2: सबसे अच्छा भी है।
1: कौन सा फल है?
2: कौन सा फल?
3: नहीं समझी?
2: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।

0: you heard right behind you were the sound of Bofors' gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
1: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
2: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहाँ लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ,
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ,
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो आने दो। ए, कौन हो तुम? रुका रुका, जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडर साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
6: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
6: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
6: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
6: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
6: कितने लोग रहे होंगे?
5: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
6: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में

0: एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
0: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाए। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे। कोई शक?
5: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम ड्यूटी के बिल्कुल पास आ गए।

0: चल जाए।
1: जी सर।
0: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
1: जी,
0: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
1: ठीक है सर।
0: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
1: जी सर।
0: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
0: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए।
1: धीरे
0: धीरे बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर
1: रेंगेंगे। जी सर।
0: कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
1: यस सर।
0: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: तो सामईन, आज हमने अक्सर अदब के इस बज़्म को सजाया है जिसमें एक तकरीर पेश करेंगे इशरत चौधरी, गज़ल सुनेंगे आप ग़ुलाम अली से, और नवाए शायर के तहत आप सुनेंगे खान रिजवान से उनके अशार। तो आइए आगाज़ करते हैं और आपको सुनवाते हैं इशरत चौधरी की ये तकरीर। मौजू है डिजिटल दुनिया और हम। तो लीजिए समाप्त कीजिए।
1: आज का दौर इंटरनेट और डिजिटल दुनिया का दौर है। मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी ज़िंदगी को इतना घेर लिया है कि इंसान तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होता और भीड़ में रहकर भी अक्सर अकेला महसूस करता है। आज का नौजवान अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में गुजारता है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल स्क्रीन हमारे सामने रहती है। रील्स, वीडियोज़, ऑनलाइन चैट्स, पिक्चर्स और वर्चुअल दुनिया धीरे धीरे हमारी असल ज़िंदगी पर हावी होती जा रही है। और अगर स्पेशली लड़कियों की बात की जाए तो इस डिजिटल दुनिया का असर उनकी जहनी सेहत, उनके इमोशंस और उनकी पहचान पर बहुत गहरा पड़ रहा है। क्योंकि एक लड़की सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठाती बल्कि सोसाइटी की उम्मीदों का भी बोझ अपने साथ लेकर चलती है। उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, क्या पहनना है और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और फिर ऑनलाइन दुनिया उस प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। आज हर दूसरी स्क्रीन पर एक परफेक्ट ज़िंदगी नज़र आती है। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट जिस्म, परफेक्ट मेकअप, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव कैफेज़, हैप्पी रिलेशनशिप्स और हर वक्त मुस्कुराते हुए लोग। धीरे धीरे एक आम सी लड़की, उसके दिल में ये एहसास पैदा होने लगते हैं कि शायद वो उतनी खूबसूरत नहीं है, उतनी सक्सेसफुल नहीं है या उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने लोग ऑनलाइन दिखते हैं। वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देती है। उसकी स्किन इतनी साफ क्यों है, मेरे चेहरे में इतनी खामियां क्यों हैं, सब लोग इतने खुश क्यों लगते हैं और मैं अंदर से इतनी उदास क्यों हूँ। ये कंपेरिजन धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज़ बन जाता है और इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ना शुरू कर देती हैं। बहुत सी लड़कियां आज अपने असली चेहरे से ज़्यादा फिल्टर्स वाले चेहरे को पसंद करती हैं। वो बिना फिल्टर या बिना मेकअप अपनी तस्वीर शेयर करने से घबराती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं लगेंगी तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ़ की बात है कि एक इंसान अपनी असल शक्ल से और असल पहचान से अनकम्फर्टेबल फील करने लगे। ये सिर्फ मेकअप या फिल्टर का मसला नहीं है, ये सेल्फ वर्थ का मसला बन चुका है। आज की बहुत सी लड़कियां खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगी हैं। वो ये भूल चुकी हैं कि उनकी असली खूबसूरती उनके किरदार, उनकी सोच और उनके दिल में होती है। डिजिटल दुनिया का एक और बहुत गहरा असर जहनी सेहत पर पड़ रहा है। बेचैनी, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और अकेलापन आज के नौजवान में बहुत आम होते जा रहा है। बहुत सी लड़कियां रात भर स्क्रोलिंग करती हैं और फिर जिस्मानी तौर पर थक जाती हैं, लेकिन उनका दिमाग नहीं रुकता। हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी देखना और अपनी ज़िंदगी को बोरिंग समझना इंसान को जहनी तौर पर थका देता है। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए ऑनलाइन रहता है ताकि वो अपने असल एहसासात से भाग सके। जब दिल उदास होता है, जब घर के मसाइल होते हैं, जब अकेलापन महसूस होता है या जब खुद से मोहब्बत कम हो जाती है, तो इंसान आरजी सुकून के लिए मोबाइल उठा लेता है। लेकिन असल में वो सुकून नहीं होता, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ देर के लिए इंसान अपने एहसासात भूल ज़रूर जाता है, लेकिन अंदर की खामोशी और खालीपन वही रहता है। आज का नौजवान ऑनलाइन दुनिया में बहुत एक्टिव है, लेकिन जज्बाती तौर पर बहुत थक चुका है। बहुत सी लड़कियां ऑनलाइन मुस्कुराते हुए तस्वीरें शेयर करती हैं, लेकिन असल में वो एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर से गुजर रही होती हैं। कई बार वो सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती हैं क्योंकि मुआशरा उनकी कमज़ोरी को समझने की बजाय उन्हें जज करेगा। वैलिडेशन का मसला भी बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। आज की लड़कियों का कॉन्फिडेंस लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर किसी पोस्ट पर अच्छे रिस्पॉन्सेज आए तो खुशी महसूस करती हैं, और अगर कम लाइक्स और फॉलोअर्स मिलें तो वो सैडनेस और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी वैल्यू को ऑनलाइन रिएक्शन से जोड़ देता है। लेकिन सच ये है कि ऑनलाइन दुनिया की अटेंशन टेम्परेरी होती है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल इग्नोर कर देंगे। अगर इंसान अपनी पहचान और अपनी खुशी को लोगों के रिएक्शन से जोड़ दे

वो कभी अंदर से सुकून महसूस नहीं कर सकता। एक रियल इंसिडेंट में एक यंग लड़की ने सिर्फ इसलिए अपनी पिक्चर्स ऑनलाइन शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि लोग उसकी स्किन और उसके वजन पर कमेंट करते थे। धीरे धीरे उसने गैदरिंग में जाना, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा कि लोग उसे जज करेंगे। सोचिए अल्फाज कितना गहरा असर छोड़ देते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की ने सिर्फ इसलिए डिप्रेशन फेस किया क्योंकि जिससे वो ऑनलाइन बात करती थी, इमोशनली कनेक्टेड थी, उस लड़के ने उसे ब्लॉक कर दिया। शायद दूसरों के लिए बहुत छोटी बात है। साइबर बुलिंग भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज लोग स्क्रीन के पीछे छुपकर दूसरों का मजाक बना देते हैं। किसी का जिस्म, स्किन कलर, पहनावा या पर्सनैलिटी पर कमेंट्स करना लोग नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके अल्फाज किसी को जहनी तौर पर कितना हर्ट कर सकते हैं। कई लड़कियां सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट की वजह से अपना एतमाद खो देती हैं। कुछ लोग डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं। एक और दर्दनाक चीज़, झूठे तसल्लियाँ, झूठे ताल्लुकात और रिश्ते जो जज्बाती लगाव हैं। ऑनलाइन दुनिया में लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। कई लड़कियाँ इमोशनल सपोर्ट और तवज्जो के लिए वर्चुअल रिलेशनशिप्स पर डिपेंड हो जाती हैं। जब कोई उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता तो वो टूट जाती हैं, और जब कोई उन्हें इंपॉर्टेंस देता है तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करती हैं। ये जज्बाती लगाव इंसान को जहनी तौर पर कमज़ोर बना देता है। प्राइवेसी और सेफ्टी का मसला भी बहुत अहम है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन शेयर करना एक ट्रेंड बन चुका

0: और स्टॉकिंग का वाकयात खास तौर पर लड़कियों के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जरूरी है कि नौजवान डिजिटल अवेयरनेस रखे और अपनी हदूद, अपनी बाउंड्रीज को समझे और उसे महफूज रखे। आजकल फैमिली रिलेशनशिप्स भी मुतासिर हो रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। फैमिली में एक साथ बैठकर भी हर शख्स एक दूसरे से बातें नहीं करता, अपने अपने फोन में मसरूफ होते हैं। रियल कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं। लोग एक दूसरे को महसूस करने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन अपडेट्स देखते रहते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि आज का यूथ अपनी असली पहचान से दूर होता जा रहा है। वो ऑनलाइन दुनिया में इतना खो गया है कि कभी कभी उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो असल में कौन है। वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते करते अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल दुनिया पूरी तरह बुरी है। अगर बैलेंस के साथ की जाए तो ये तालीमी आगाही और मौक़ों का बहुत अच्छा जरिया बन चुकी है। मसला टेक्नोलॉजी नहीं है, इम्बैलेंस है। मसला ये है कि हम वर्चुअल दुनिया को असल ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमें ये समझना होगा कि हर मुस्कुराती हुई तस्वीर के पीछे खुशी नहीं होती, हर परफेक्ट चेहरे के पीछे कॉन्फिडेंस नहीं होता और हर वायरल इंसान इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता। बहुत से लोग ऑनलाइन सिर्फ इसलिए खुश दिखते हैं क्योंकि वो अपना दर्द दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। मैं ख़ास तौर पर लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि खुद को किसी ऑनलाइन स्टैंडर्ड से कंपेयर मत करें। आपकी वैल्यू किसी फिल्टर, लाइक्स या फॉलोअर्स से डिसाइड नहीं होती है। आपका किरदार, आपका दिल, आपकी सोच और आपकी मेहरबानी ही आपकी असली खूबसूरती है। खुद को एक्सेप्ट करें, अपने जहनी सुकून को ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए सेक्रीफाइस मत करें। डिजिटल दुनिया से ज़्यादा अपनी रियल ज़िंदगी को अहमियत दें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अपनी हॉबीज़ को वक्त दें और सबसे अहम, खुद के साथ कनेक्शन मजबूत बनाएं। वालिदैन को भी ये समझना होगा कि सिर्फ फ़ोन छीन लेने से मसला हल नहीं होता। आज के नौजवान को जज्बाती सपोर्ट और सेहतमंद कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जब एक बच्चा जज्बाती तौर पर खुद को सुना गया महसूस करता है तो वो वर्चुअल दुनिया पर गैर सेहतमंद इंतज़ार नहीं करता। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन दुनिया एक आईना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यार आईने में दिखने वाली चीज़ सच हो। असल खूबसूरती फिल्टर्स में नहीं होती, असल एतमाद फॉलोअर्स में नहीं होता और असल सुकून मोबाइल स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रियल होने की ज़रूरत है। अपनी जहनी सेहत, अपने जज्बात और अपनी पहचान का ख्याल रखें, क्योंकि अगर इंसान अंदर से टूट जाए तो दुनिया की कोई भी तवज्जो उसे शिफा नहीं दे सकती।
1: सामीन इकराम, अभी आप इशत चौधरी से ये मालूमाती तकरीर सुन रहे थे। मौजू था डिजिटल दुनिया और हम। लीजिए अब समाप्त कीजिए गुलाम अली की आवाज़ में हसत मोहानी का।

0: वाह क्या बात है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो सामीन, वाकई इस गज़ल को सुनकर आप भी अपने उन यादों में ज़रूर खो गए होंगे, जिन यादों को आप सोचते हैं और सोच करके मुस्कुराते हैं, ख्याल करते हैं। तो आइए सामीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक पहुँच चुके हैं और आखिर में नवाए शायर के तहत लीजिए समात कीजिए डॉक्टर खान रिजवान से उनका कलाम।
1: गज़ल का मतलब पेशे खिदमत है। देखिए कि अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। कोई मुझको मरने से कब रोक सका, वक्त मेरा आया और किस्सा पाक हुआ। फिर देखिए कि क़ैद रहा मैं कुछ ऐसा अपने घर में, क़ैद रहा मैं कुछ ऐसा अपने घर में, भीड़ में भी तन्हाई का इदराक हुआ। भीड़ में भी तन्हाई का इदराक हुआ। और ये शेर कि मैं तो पुरानी कदरों का था परवरदा, मैं तो पुरानी कदरों का था परवरदा, लेकिन रफ्ता रफ्ता यूं बेबाक हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता यूं बेबाक हुआ। कोई कब पुरसाने हाल किसी का हुआ, कोई कब पुरसाने हाल किसी का हुआ, किस्से दर्द को सुनकर मैं नमनाक हुआ। कौन किसी का कब सुनता है ए रिजवां, कौन किसी का कब सुनता है ए रिजवां, किस्से दर्द सुनाकर मैं नमनाक हुआ। अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। और एक गज़ल का मतलब देखिए कि जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। और ये शेर की आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए, मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। रिजवां मेरी राहों में न आना के मुझे खुद, रिजवां मेरी राहों में न आना के मुझे खुद, गुम करदा तलब गारे अना कर दिया जाए, गुम करदा तलब गारे अना कर दिया जाए। आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए। एक गज़ल के चंद अशआर देखें, मतलब है कि तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, शिकम की भूख मिटाने को सर झुकाते हैं। तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, शिकम की भूख मिटाने को सर झुकाते हैं, सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा, सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा, जभी तो लोगों पे हंस हंस के जुल्म ढाते हैं। सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा,

0: जब ही तो लोगों पे हंस हंस के जुल्म ढाते हैं, हमें तो कोई शिकायत नहीं है गैरों से, हमें तो कोई शिकायत नहीं है गैरों से, हमारे दोस्त ही हमको बहुत रुलाते हैं, हमारे दोस्त ही हमको बहुत रुलाते हैं। ये कैसे लोग हैं तरके अना की खातिर जो, फिर देखिए कि कैसे लोग हैं तरके अना की खातिर जो, वकारे आदमियत खाक में मिलाते हैं। ये कैसे लोग हैं तरके अना की खातिर जो, वकारे आदमियत खाक में मिलाते हैं। और ये शेर की मुनाफ़िकत की सिफत रास आ गई उनको, फिर देखिए कि मुनाफ़िकत की सिफत रास आ गई उनको, मुनाफ़िकीन से वो हाथ अब मिलाते हैं, मुनाफ़िकीन से अब हाथ वो मिलाते हैं। और एक गज़ल के दो तीन शेर देखें, मतलब यूँ है कि मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, जीने के असबाब उछाले पानी में, जीने के असबाब उछाले पानी में, ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से। फिर देखिए कि ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से, तहजीबो आदाब उछाले पानी में, ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से, तहजीबो आदाब उछाले पानी में। और ये शेर के जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, तब जाकर कम ख्वाब उछाले पानी में, जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, तब जाकर कम ख्वाब उछाले पानी में, कर्ब ने कितना मुश्किल जीना कर डाला, कर्ब ने कितना जीना मुश्किल कर डाला, वक्ते सहर गिरदाब उछाले पानी में, कर्ब ने कितना मुश्किल जीना कर डाला, वक्ते सहर गिरदाब उछाले पानी में, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, दर्दे दिले बेताब उछाले पानी में, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, दर्दे दिले बेताब उछाले पानी में, मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, जीने के आदाब उछाले पानी में। एक गज़ल के चंद अशआर और देखें कि गम कदे में रहते हैं, दुख छुपाए फिरते हैं, दिल भी कांप उठता है खुल के मुस्कुराने में, दिल भी कांप उठता है खुल के मुस्कुराने में। और ये शेर देखें कि लोग हंस पड़े एक दिन और फिर लगे रोने, लोग हंस पड़े एक दिन और फिर लगे रोने, था लिखा हुआ सब कुछ ज़िस्त के फसाने में, कह रहे हो तुम जिसको वक्त का सिकंदर है। शेर देखें कि कह रहे हो तुम जिसको वक्त का सिकंदर है, बेज़मीर इंसान है आज के ज़माने में, ये भी देखा है रिजवान लोग टूट जाते हैं, ये भी देखा है रिजवान लोग टूट जाते हैं, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में, ये भी देखा है रिजवान लोग टूट जाते हैं, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में। के देखें कि ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तियारा नहीं, ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तियारा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं। और ये शेर देखें कि भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं। और ये शेर की उसी को ख्वाबे हवस में हैं देखती आँखें, उसी को ख्वाबे हवस में हैं देखती आँखें, हमारे पास कोई और माह पारा नहीं, हमारे पास कोई और माह पारा नहीं। और ख़ास तौर से ये शेर की वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, शेर देखिए कि वो चाहता है, वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, کسی کا ہو کے رہیں یہ اسے گوارا نہیں، کسی کا ہو کے رہیں یہ اسے گوارا نہیں، وجود جاں کے سوا ملکیت نہیں کچھ بھی، اسی سبب سے میرا کوئی گوشوارا نہیں، وجود جاں کے سوا ملکیت نہیں کچھ بھی، اسی سبب سے میرا کوئی گوشوارا نہیں، چلو کہ کرتے ہیں تخلیق ایک نئی دنیا، چلو کہ کرتے ہیں تخلیق ایک نئی دنیا، کوئی نصیب کا اپنے یہاں ستارہ نہیں، کوئی نصیب کا اپنے یہاں ستارہ نہیں، اسی کو خواب ہوس میں ہیں دیکھتی آنکھیں، ہمارے پاس کوئی اور ماہ پارا نہیں۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے خان رضوان سے ان کا یہ کلام۔ تو سامعین، یقیناً آج آپ اس پروگرام عکس ادب سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا انتظار سیفی نے۔ تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को हैं, लीजिए सुनते हैं समाचार।

0: El Khiladi, Khelon Ka Aina.
1: मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं विदुषी वत्स।
2: नमस्कार श्रोताओं, खुशखबरी है गुजरात के गांधीनगर से, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाया है और इस नारी शक्ति से पूरा देश गर्व में।
1: हाँ बिल्कुल विदुषी, लगातार दूसरे दिन यहाँ भारत ने पदक जीता है। कल कोमल ने जिताया था और आज ज्ञानेश्वरी ने ये कमाल करके दिखाया है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो आज जिन खेलों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप?
2: तो हम वेटलिफ्टिंग के चैंपियनशिप के बारे में तो बात करेंगे ही, जैसा कि आप जान चुके हैं। हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में भी, जहां बात होगी आईपीएल की। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली है। वहीं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को है सिर्फ 30 दिन शेष। क्रिकेट से चलेंगे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की तरफ। बात करी जाएगी एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 अंडर 17 चैंपियनशिप की, जहां अंडर 17 में लक्ष्य फोगाट एकमात्र भारतीय फाइनलिस्ट के रूप में उभरे हैं।
1: हाँ बिल्कुल विदुषी, बात हॉकी की भी होगी, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। ये दौरा 26 मई से 30 मई तक होगा, जहां 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड में नेशंस कप भी होना है और वहां ट्रेनिंग और मैच का कंपटीशन का ये दौरा रहेगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। बात ईस्ट बंगाल की होगी, जहां जिसने दूसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग पर भी चर्चा होगी, जहां रॉयल रेंजर्स ने दिल्ली एफसी को 1-0 से हरा दिया है।

गुजरात के गांधीनगर में चल रही एशियाई भारोत्तोलन में भारत ने लगातार दूसरे दिन पदक अपने नाम कर लिया। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलो भार वर्ग में पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नेच में 88 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे स्थान पर रही यानी कि रजत पदक अपने नाम किया। यह उनका व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 106 के श्रेष्ठ प्रयास के साथ कुल 194 के प्रदर्शन के साथ वह ओवरऑल कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रही। तो दो पदक ज्ञानेश्वरी ने भारत की झोली में डाल दिए। यह प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय मानक में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर आज के अन्य प्रदर्शन की बात करें तो भारत के ओर से राजा मुथु पांडी भी 65 भार वर्ग में उतरे थे। स्नेच में उन्होंने 126 का वजन उठाया था और हालांकि दूसरा प्रयास वो असफल हो गए थे 129 वजन उठाते समय, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 129 किलो भार वजन उठा दिया था। लेकिन क्लीन एंड जर्क में शायद वो उतना बेहतर नहीं कर पाए और 164 के अपने श्रेष्ठ प्रयास से 293 अंक ही ले पाए। और जहां तक इसके पोडियम फिनिश की बात है 65 भार वर्ग के पुरुष के, तो यहां चीन ने स्वर्ण पदक जीता, कोरिया ने रजत, जबकि चीन के खाते में ही कांस्य पदक गया यानी

0: दो पदक चीन के खाते में गए और चीन के हे यूजी जिन्होंने गोल्ड जीता क्लीन एंड जर्क में 329 के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे और उनका श्रेष्ठ प्रयास क्लीन एंड जर्क में 183 किलो रहा। जहां तक बात राजा मुथुमंती पार्टी की है वो सातवें स्थान पर रहे 65 भार वर्ग में। तो बहरहाल शानदार प्रदर्शन किया भारत की ओर से ज्ञानेश्वरी ने और कल जैसा हमने जिक्र किया था कि कोमल कहार ने 48 भार वर्ग में 177 किलो वजन उठाकर पदक दिलाया था। तो दो दिन में दो पदक भारत को मिल चुके हैं और आज जो मुकाबले खेले जाने हैं उनमें चारूपासी 65 भार वर्ग में, संजना 77 में, माई बार बाटिना देवी प्लस 86 यानी 86 भार वर्ग से अधिक, वेदाव्रत भराली 79 में, पर्व चौधरी 94, टीम आदवान 71, वल्लूरी अजय बाबू 79 और अभिषेक निपाने 88 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगे और उनसे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। जहां तक बात 65 भार वर्ग में महिला वर्ग की है वहां बिंदिया रानी पदक की एक बड़ी उम्मीद है। महिलाओं में 53 भार वर्ग की बात करें तो ज्ञानेश्वर यादव ने स्नेच में तीन प्रयासों में 257 किलो वजन उठाया। पहले प्रयास में उन्होंने 83 किलो, दूसरे में 86 और तीसरे में 88 किलो वजन उठाने में वह सफल रहीं। स्नेच में वह दूसरे स्थान पर थी और जिसमें 88 किलो का उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चीन की झाओ जिनलान ने स्नेच में 95 का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रही। पहले प्रयास में 90, दूसरे में 93 किलो वजन उठाया और तीसरे में 95 की लिफ्ट उन्होंने की। क्लीन एंड जर्क में चीन की झाओ ने 112, 117 और 121 वजन उठाया और पहला स्थान प्राप्त किया। वियतनाम की भी हुई कांस्य पदक जीतने में सफल रही। तो ये शानदार प्रदर्शन रहा भारत को, दो दिन में दो पदक मिल चुके हैं और वियतनाम की एच हुई जिनके श्रेष्ठ प्रयास करने में सफल रही अपना, लेकिन वो बेहतर उससे नहीं कर पाई, पोडियम में अपनी बेहतर पोजीशन नहीं हासिल कर पाई। दरअसल कोरिया की ग्योंगकोंग भी बड़ी दावेदार थी और लेकिन पहले प्रयास में 93 किलो को प्रयास में वे इंजर्ड हो गई थी और फिर दर्द के बीच भी हालांकि उन्होंने अपने दो अंतिम प्रयास किए लेकिन वजन उठाने में विफल रही और 9 लिफ्ट के साथ उनका प्रदर्शन काउंट नहीं हुआ। भारत की कोयल बार तीसरे प्रयास में 84 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही लेकिन उनका एक प्रयास विफल हो गया था, ऐसे में उनकी पदक की दावेदारी पर असर पड़ा। अभी क्लीन एंड जर्क में और जो स्नेच में अन्य पुरुष और महिला वर्ग में भारत की कई खिलाड़ी जो हैं वो पदक की दावेदारी में हैं, देखना है कैसा प्रदर्शन रहा। लेकिन बहरहाल जो अभी तक जो दो पदक आए हैं भारत की, लगातार दूसरे दिन हमने पदक लिया है, इस पर हमने बात की रेलवे के चीफ कोच वेटलिफ्टिंग के सुनील से और क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं भारत के इस प्रदर्शन पर। लगातार दो दिन दो मेडल,
1: परफॉर्मेंस अच्छी रही, स्नैच तो उसने इम्प्रूवमेंट किया, स्नैच में तो आज उसने अपना बेस्ट किया है लेकिन वो क्लीन जर्क में अपना टोटल क्लीन जर्क अच्छा नहीं कर पाई, आगे अच्छा करेगी वो, हमें उम्मीद है कि वो आगे क्लीन जर्क भी अच्छा करेगी, जैसे स्नैच आज अच्छी की और क्लीन जर्क भी अच्छा करेगी, पूरी उम्मीद है हमें उस लड़की से।
2: तो सर 29 देश भाग ले रहे हैं,
1: हाँ, जी,
2: तो एक कड़ा कंपटीशन है, उसके बीच में ये प्रदर्शन आप किस तरह देखते हैं सर?
1: नहीं बहुत एशिया, हमारा वेट लिफ्टिंग का एशिया मेडल इसका मतलब वर्ल्ड मेडल ओलंपिक के नजदीक, क्योंकि एशिया जितना भी गोल्फ कंट्री होती है वो सारा वेट लिफ्टिंग में बहुत स्ट्रांग है और अब हमारा अगर यहाँ एशिया में दो हमारे मेडल आए हैं तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस अप है और हम जो ना हो जो कॉमनवेल्थ में इस बार बहुत मेडल लेंगे, ओलंपिक के नजदीक रहेंगे और भी ज्यादा बच्चे हमारे,
2: हमें तैयारियों को भी अपनी परख करने का मौका मिलता है, जो नए जो वेट लिफ्टर हैं उनके पास भी अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर है
1: बहुत ज्यादा, बिल्कुल है। देखो अब अपने अपने अगर अपने देश में कमीशन हो रहा है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे देख के इससे प्रेरणा लेंगे कि हम भी वेट लिफ्टर लिफ्टिंग करें, इतने इनको इतने प्लेयरों को देख के बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, जो पुराने बच्चे भी हैं उनको भी उनके उनको देख के कुछ सीखने का मौका मिलेगा, टेक्निक भी और उत्साह भी जोश भी जो उनको दे उनका है वो अपने अपने अंदर ही, हमारे बच्चे भी उसको लेके अच्छा करेंगे। तो ये एशिया कमीशन हमारा भी डिप्टिंग है, बहुत टफ और बड़ा कमीशन होता है।
2: तो अगर महिला वर्ग की बात करें तो बिंदिया रानी भी हैं जो पदक की दावेदार हैं और उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि...
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिंदिया रानी से पूरी उम्मीद है, अभी 6 बजे बिंदिया रानी का कमीशन स्टार्ट होगा।
2: तो आपको लगता है कि यहाँ एक थोड़ा घरेलू एडवांटेज भी है, यहाँ चीन के जो वेट लिफ्टर हैं उनका प्रदर्शन भी अच्छा और एक कड़ी चुनौती मिल रही है?
1: देखो मैंने अब आपको बताया ना, वेट लिफ्टर का एशिया बहुत बड़ा कमीशन है, बहुत बड़ी कड़ो चुनौती है, एक एक किलो से इक्वल में और एक एक किलो से मेडल जाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है वेट लिफ्टिंग के, इंडियन वेट लिफ्टर के लिए।

और जिन्होंने बताया कि 2 दिन में ये लगातार हमारे जो अभी प्रतियोगिता शुरू हुई है उसके बाद 2 मेडल हमने हासिल कर लिए हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है और इसे निश्चित रूप से इससे जो अन्य वेट लिफ्टर हैं भारत के उनको और प्रेरणा मिलेगी और वो बेहतर करने में सफल रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वेटलिफ्टिंग से चलते हैं अब बैडमिंटन के कोर्ट की ओर विदुषी, और यहां भी भारत का प्रदर्शन जगमगा रहा है और पीवी सिंधु भारत की स्टार शटलर, उन्होंने जीत से शुरुआत की है और उसके अलावा किदांबी श्रीकांत भी जीत गए हैं। महिला वर्ग की अगर बात करें तो मालविका बंसोड ने अभी जीत हासिल की है, कनाडा की वाईजांग को हराया है। 3 गेमों का कड़ा मुकाबला चला और वहां जीतने में सफल रही है। उसके अलावा थाईलैंड मास्टर की विजेता देविका सिहाग ने भी जीत से शुरुआत की है। तो ये टूर्नामेंट बैंकॉक में चल रहा है। सिंधु ने चीनी ताइपे की तिंग तोंग सीयू तोंग को 21-9, 21-12 से मात दी। सीधे गेमों में एक शानदार जीत हासिल की उन्होंने। इसके अलावा दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत का नाम किदांबी ने सिंगापुर के 8वीं वरीयता प्राप्त लो किन यू को 21-14, 21-15 से पराजित किया। श्रीकांत का सामना अब चीनी ताइपे के सू ली यांग से होगा। वहीं पुरुष एकल के अन्य मुकाबलों की बात करें तो भारत की आयुष शेट्टी को जापान की 6वीं वरीयता प्राप्त कोडाई नारोओका के खिलाफ 13-21, 21-17, 4-21 से कड़े मुकाबले में पराजय झेलनी पड़ी। जबकि तरुण मन्नेपल्ली जापान के ही कोकी वातनाबे से 12-21, 16-21 से हार गए। महिला एकल में उन्नति हुड्डा और अनमोल खरब को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्नति हुड्डा को पोर्णपावी चोचुवांग ने, जो कि दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी हैं, उन्हें उन्नति हुड्डा को 21-11, 17-21, 16-21 से हराया। और अनमोल खरब को चीन की चेन यूफेई ने 21-19, 13-21, 18-21 से मात दी। लेकिन ये तो थे शुरुआत के मुकाबले। उसके बाद अब जो शाम का सत्र है वहां भारतीय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की है, उन्होंने सिंगापुर को जिया हैंग चेन को 21-16, 21-17 से पराजित किया है और अब प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं। जहां तक बात देविका सहवाग की है, थाईलैंड मास्टर की विजेता देविका सहवाग जीत से शुरुआत की है और थाईलैंड में टूर्नामेंट उन्हें खास रास आता है। और जो शुरुआत की है उन्होंने जापान की नातासुकी को 21-9, 13-21, 21-15 से हराया है और प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर में अब उनके सामने थाईलैंड की खिलाड़ी होंगी। और जहां तक बात मालविका बंसोड की है, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की है। कनाडा की वाईजैंग को 13-21, 26-24 और 21-13 से उन्होंने पराजित किया है। और अब जो मुकाबले खेले जाने हैं, यहां जहां भारतीय खेल प्रेमियों की नजर होगी वो ईशा रानी बरुआ का मुकाबला है, जो कि महिला एकल में चुनौती पेश कर रही हैं और उभरती हुई शटलर हैं। उनसे उम्मीद है कि वो जो सिंधु मालविका और देविका की जो जीत उन्होंने शुरुआत की है उस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं।

0: अभिदुषी, क्यों ना अब बात महिला क्रिकेट की करें, क्योंकि महिला क्रिकेट के लिए भारतीय टीम कड़ी तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप बिल्कुल मुहाने पर है और उसके लिए तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही है। क्या बताना चाहेंगी श्रोताओं को?
1: जी हाँ, बिल्कुल। महिला क्रिकेट के सबसे बड़े महासंग्राम के शुरू होने में अब सिर्फ 30 दिन शेष हैं। जी हाँ, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का 10वां संस्करण इस बार इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं, जो हो रहा है 12 जून से 5 जुलाई तक। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट करीब आ रहा है, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार इसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे। इससे पहले संस्करणों में केवल 10 टीमें रही हैं, इस बार 12 होंगी। मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम अपने खिताब का बचाव जरूर करने के लिए उतरेंगी, जबकि बाकी टीमें उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 12 जून को बर्मिंगम में होने वाला है। इस मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना श्रीलंका की टीम से होगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें खास तौर पर रहेंगी 14 जून को होने वाले मैच में, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 30 जून और 2 जुलाई को होने वाले हैं द ओवल में, जबकि सेमीफाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। अब बात टूर्नामेंट की

थोड़ी आगे प्रारूप के करें तो 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 6 टीमें होंगी। अब इसका महत्व ये है कि हर टीम अपने ग्रुप की बाकी सभी टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यानी ग्रुप चरण का हर मैच बेहद अहम होगा क्योंकि एक भी हार आगे की राह मुश्किल बना सकती है। भारत ग्रुप 1 में है जहां भारत के साथ हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीमें। वहीं ग्रुप 2 की बात

0: आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। दूसरा होता है अनसेफ टाइप का। अनसेफ टाइप में क्या होता है, पर्दे के ऊपर की जो कान की हड्डी है वो गलने लगती है, क्योंकि कान जो है हमारा बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो कि कान का रास्ता है जिसमें कि मैल जमता है,
1: जी
0: उसके बाद मिडल ईयर होता है जिसमें तीन छोटी हड्डियां हैं बॉडी की, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, वो पर्दे के पीछे होती हैं। और ये आवाज बाहर से आवाज आ रही है वो पर्दे से होती हुई इन हड्डियों के थ्रू अंदर इनर ईयर में जाती है, वहां से आवाज नसों के थ्रू ब्रेन तक जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: अब आप ये समझिए कि जो कान की जो हमारी ये मिडिल ईयर है उसकी छत के ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है हमारा,
1: जी
0: जिसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं।
1: जी
0: तो आप समझिए कि अगर कान की हड्डी गल रही है तो वो एकदम ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है। तो इसीलिए इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब इन सब के कारण क्या हो सकते हैं, बच्चों में, वृद्धावस्था में, या फिर जो युवक युवती हम में?
0: देखिए, कान बहने का सबसे बड़ा एक आम कारण तो यह है कि जो हमारे घर में, अगर मैं पहले सेफ टाइप का लेता हूँ, पर्दे में छेद हो गया, पर्दे में छेद का क्या, स्कूल में बच्चा जाता है उसको टीचर ने थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ मारने से कान के पर्दे में बच्चे के छेद हो सकता है।
1: जी
0: इसी तरह कान में लोग तिल्लियां डालते रहते हैं, माचिस की तिल्ली डाल ली, कुछ भी डाल लिया साफ करने के लिए, मैल
1: जी
0: खुजली
1: हाँ
0: होती है क्योंकि वैक्स जमा होगा तो खुजली होगी,
1: जी
0: वो तिल्लियां डाल देते हैं। जो कान का हमारा छेद दिख रहा है
1: जी
0: उसके
1: हाँ
0: 1 इंच अंदर पर्दा है, अगर हमने 24 मिलीमीटर के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी तो आप समझिए पर्दे में छेद होने ही होना है। तो इसीलिए कान में कभी भी तिल्ली या कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए कान के मैल को साफ करने के लिए। एक और कारण होता है कि अगर आपके सपोज किसी शोर में जाते हैं जहाँ बहुत तेज आवाज है, जैसे दिवाली के ऊपर पटाखे बज रहे हैं या और कोई ऐसा मौका है जिसमें बहुत तेज आवाज आ रही है, तो उससे भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है। और छेद होने से कान के पीछे की जो हड्डी है वो भी अपनी जगह से हिल सकती हैं, जिसमें कि ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब आजकल देखा जाता है कि क्योंकि सबके पास मोबाइल है और सबके पास ईयर लीड और उसके बाद में ये हेडफोन वगैरह सब रहते हैं, हमेशा आप देखते होंगे कि लोग अपने कानों में ईयर लीड लगा करके तेज आवाज में सुनते रहते हैं या फिर हमेशा लगा ही रहता है,
0: लगा ही रहते
1: तो
0: हैं।
1: क्या इसके कारण भी ईयर रिंग लॉस हो सकता है?
0: सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कान में मैल बन रहा है, वैक्स जिसको
1: जी
0: बोलते हैं, उसकी अगर हम कान को बिल्कुल नहीं छेड़ें तो वो वैक्स अपने आप बाहर आ जाता है, मगर जब हम कान में ईयरबड से सफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैल निकाल लें, तो वो वैक्स को हम और अंदर पुश कर देते हैं। तो इसलिए अपने आप कभी भी कान में कोई तिल्ली डाल के वैक्स निकालने की कोशिश ना करें, नहीं तो वैक्स अंदर चला जाएगा। अच्छा, ईयर प्लग लगाने से क्या होता है कि जो वैक्स बाहर आना चाहिए वो रुक जाता है वहां पे, तो इससे क्या होता है अंदर कान के मैल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उससे कई बार कान के जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी वॉल में डैमेज भी हो सकता है, और इम्पैक्टेड वैक्स जब इकट्ठा होता रहेगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा,
1: जी
0: उसकी वजह से आपके कान में दर्द भी हो सकता है और हियरिंग लॉस तो होना ही होना है आपके।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो मेडिसिन्स वगैरह सब यूज करते हैं, कई बार कानों में मेडिसिन्स वगैरह सब डाल देते हैं अपने तरीके से, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी ये हियरिंग लॉस होने की या फिर खराब होने की चांसेस होते हैं?
0: देखिए, कई ज्यादातर लोग जो डालते हैं सेल्फ मेडिकेशन, उसमें वो सरसों का तेल डाल लेंगे गर्म करके, या प्याज या लहसुन, इनका जो अत्र होता है वो डाल लेते हैं। आप एक्चुअली जो कैनाल है उसमें आप इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी जो एलोपैथिक की टेस्ट बुक्स हैं उस इन तरह के चीजों का कोई मेंशन नहीं है
1: जी
0: कि इनसे क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, बट हो सकता है कि कोई केमिकल इनमें हो जिसकी वजह से आपका पर्दे में भी डैमेज हो सकता है, हो सकता है पर्दा फट जाए। तो हम इन चीजों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप कान में तेल डालें या कोई भी किसी भी पदार्थ डालें। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन आती हैं जो मैल को सॉफ्ट कर देती हैं, और आप वो सुबह शाम डालिए 5-6 दिन, तो वो मैल अपने आप सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि सोते वक्त या कभी किसी वक्त कुछ कीट पतंगे वगैरह से घुस जाते हैं,
0: हाँ
1: तो क्या उसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता
0: बिल्कुल,
1: है?
0: कीट पतंगा कान में घुस गया है, जैसे कान खुजूरा घुस जाए, तो कई बार वो पर्दे को डैमेज करके कान के मिडिल ईयर में भी जा सकता है।
1: जी हाँ
0: तो इस समय ये है कि अगर आपके कोई कीड़ा चला गया है, वो नेचुरली बहुत दिक्कत करेगा कान में, अब आपके पास कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फिर कोई तेल ऑयल डाल सकते हैं कान के अंदर, जैसे सरसों का तेल हो गया, कोई भी जो अवेलेबल ऑयल हो, और उसको डाल के लेट जाइए थोड़ी देर। उससे क्या होगा कि जो जानवर अंदर घुसा है उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, तो वो डेड हो जाएगा। तो डेड होने से फिर आप कान को वापस टेढ़ा कर लीजिए, और वो
1: जी
0: हो सकता है जो ऑयल डाला है उसमें मिक्स होकर बाहर आ जाए, अगर
1: जी
0: नहीं आता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लीजिए ENT के।
1: डॉक्टर साहब, क्या वर्टिगो यानी कभी कभी चक्कर आने की समस्या वगैरह भी होती है, तो क्या इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है, कान खराब हो सकते
0: नहीं,
1: हैं?
0: नहीं, वर्टाइगो की वजह से चक्कर नहीं आते, बट देयर कोई काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें हियरिंग लॉस भी होता है, जैसे मीनियस डिसीज एक बहुत कॉमन चीज है, या एकॉस्टिक न्यूरोमा है, या आपके कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से चक्कर आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी मतलब उसमें तो फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट उसको चेकअप करेगा कि अगर हियरिंग लॉस भी हो रहा है और वर्टिगो भी आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ईएनटी डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जब तक कि कोई

0: ही नहीं, इधर एक स्वाहिली या ऑल इंडिया रेडियो डेली
1: एक सुपरेटी ऑटाइटिस मीडिया होता है, ये कान का बहना, यानी कान जब बहने लगता है, कान में छेद हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक सुपरेटी ऑटाइटिस मीडिया बोलते हैं, CSM। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है सेफ टाइप का, जैसे कान के पर्दे में छेद हो गया
2: जी हाँ।
1: वो सेफ टाइप का, क्योंकि उस

0: 70 साल का आदमी है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, प्रेस बाइकोसिस भी है, यानी हियरिंग लॉस भी उसका उम्र की वजह से कम हो गया है, तो उनको कई बार चक्कर आ जाते हैं इसकी वजह से। बट हियरिंग लॉस की वजह से आमतौर पर चक्कर नहीं आता, उसका कारण इन्वेस्टिगेट करना पड़ता
1: है। डॉक्टर साहब, इतने सारे लक्षण और कारण हो जाते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें जाँच करनी चाहिए, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए?
0: देखिए, डॉक्टर के पास में सबसे जरूरी है, जैसे मैंने बताया, अनसेफ टाइप का CSM, यानी अगर आपके कान के पर्दे के ऊपर की जो हड्डी है वो गल रही है, आपको कैसे पता चलेगा मेरा पर्दे में छेद है या हड्डी गल रही है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपके कान से मवाद पीले रंग का आ रहा है और बहुत कम मात्रा में आता है, बदबूदार, तो इसका मतलब आपके कान की हड्डी गलने के चांस है। अगर आपके कान से सफेद रंग का मवाद आता है, जब भी जुकाम होता है या गला खराब होता है और कान बहने लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है आपके पर्दे में छेद है। आमतौर पर जिन लोगों को बार बार जुकाम होता रहता है, गला खराब होता है, उनके कान के पर्दे पर भी असर पड़ता है। अगर आपकी नाक बंद रहती है किसी भी वजह से, आपकी हड्डी टेढ़ी है नाक की, या साइनस की प्रॉब्लम है, या पॉलिप्स है, तो वो आपके कान पर भी असर डाल रही है, क्योंकि वो जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है नाक के पीछे के हिस्से को कान से, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दे में छेद होने का भी डर रहता है और कान की हड्डी गलने का भी खतरा है उसमें।
1: डॉक्टर साहब, इसमें किस प्रकार की जांच की जाती है?
0: इसमें सुनवाई की अगर किसी को कमी है तो हम इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, मगर अगर कोई नवजात शिशु है, जैसे कोई 2 महीने का है या 6 महीने का है, तो उसमें हम फिर बैरट टेस्ट करते हैं, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसमें बच्चे को सुला के सिर पे इलेक्ट्रो लगा के कंप्यूटर से टेस्टिंग की जाती है कि बच्चे को किस तरह का हियरिंग लॉस है और कितना हियरिंग लॉस है, सीवियरिटी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस।
1: तो डॉक्टर, इसमें सीटी स्कैन भी किया जाता है?
0: सीटी स्कैन तो हम तब करते हैं अगर हमें लग रहा है कि कोई, जैसे मीनियस डिसीज है, या कोई हमें ट्यूमर लग रहा है ब्रेन में, सीपी एंगल का कोई ट्यूमर है, हमें लग रहा है हड्डी गल रही है, तो उसमें हम सीटी कराते हैं, HRCT टेम्पोरल बोन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कान की हड्डियां कितनी गल रही है। मतलब हाँ, उसमें यह है कि जब हम ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और मरीज को भी बता सकते हैं कि भाई हम आपका ऑपरेशन करना है, आपके कान की 2 हड्डी गली हुई है, ताकि मरीज को पता रहता है मेरे को क्या प्रॉब्लम है।
1: डॉक्टर साहब, जब कारण लक्षण इस सब के बारे पता चल जाता है, उसके बाद हम इलाज पे आते हैं, तो इलाज किस प्रकार होने चाहिए, क्या सबका तो अलग अलग इलाज ही है?
0: अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो उसके हम टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं, यानी पर्दे का जो छेद है उसको हम रिपेयर कर देते हैं एक नए पर्दे से।
1: डॉक्टर साहब, एक नए पर्दे से जब रिपेयर कर देते हैं तो क्या उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है किस प्रकार होती है?
0: वो जो हम पर्दा बनाते हैं वो मरीज के ही शरीर का हिस्सा होता है, ये नहीं कि किसी और मरीज का हिस्सा हमने डाल दिया, तो उस मरीज के हिस्से से ही हम एक ग्राफ्ट लेके उससे रिपेयर करते हैं।
1: तो इसमें क्या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होती है?
0: नहीं, ये सब ऑपरेशन जो है माइक्रोस्कोप में होते हैं या एंडोस्कोप से होते हैं। इसी तरह अगर कान की हड्डी गल रही है तो उसमें मैस्टॉइड सर्जरी की जाती है, जो कि बेहोश करके की जाती है, और उसमें सारी गली हुई हड्डी को निकाल के, क्योंकि हमारा एम ये होता है कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। सबसे पहले पेशेंट की लाइफ सेव होनी चाहिए, उसके बाद उसका कान से मवाद आना रुकना चाहिए और उसकी हियरिंग इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारे एम्स।
1: सब ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज होता है? हाँ, क्या चीज होती है और इसमें किस प्रकार के काम होते हैं?
0: कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हियरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई है। आमतौर पे जिन लोगों को हियरिंग लॉस है इतना ज्यादा कि हियरिंग एड से उनको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम एक ऑपरेशन के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बताया, नवजात शिशु होते हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हियरिंग लॉस है, कंप्लीट हियरिंग लॉस है, तो उसमें हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। इसमें एक इशू बस ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट जो होते हैं वो उनकी कॉस्ट फैक्टर है, ये सब कुछ लाख के होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए यह है कि गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा ही नॉर्मली हम करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लेके इन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। बट अगर सपोज कोई एडल्ट आदमी है जिसमें इसको किसी वजह से उसको हियरिंग लॉस हो जाता है, तो उसमें भी हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये ऑडियोमेट्री किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है इसमें?
0: ऑडियोमेट्री एक हियरिंग लॉस असेसमेंट के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। इससे हमें एक तो डिग्री पता चल जाती है कितना हियरिंग लॉस है, उसकी किस तरह का हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या नसों का हियरिंग लॉस है, तो हमें सारा उसकी सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पता चल जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, दवाओं के इस्तेमाल में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: दवाएं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफी दवाइयां होती हैं जो कि कान की हियरिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां हैं, जैसे क्लोरोक्वीन होती है, ये जो मलेरिया में यूज की जाती है, इसी तरह कुछ डायरेटिक्स होते हैं, इसी तरह इंजेक्शन होते हैं जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कुछ जो कि बहुत कॉमन यूज होते हैं, बट वो सब कान के लिए डैमेजिंग है।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते अब क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको?
0: मेरा संदेश यही रहेगा कि आपका कान एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से उपहार है आपको, उसको संभाल के रखिए। संभालने के लिए जरूरी है सबसे पहले तो शोर से बचें, कान में कभी भी कोई तिल्ली विल्ली ना डालें, अगर आपका कान बह रहा है तो उसको लापरवाही ना बरतें, उसको फौरन किसी डॉक्टर को दिखा के पता करें कि मेरे को किस तरह का प्रॉब्लम है कान में, कान में छेद है या कान की हड्डी गल रही है। अगर हड्डी गल रही है तो वो उसका फौरन इलाज कराना जरूरी है। इसी तरह अगर किसी को कान में मवाद आने की शिकायत हो तो उसको कभी भी किसी नदी में या तालाब में नहाना नहीं चाहिए, और कान मैलियों से कान कभी साफ ना कराएं।

0: क्योंकि वो कान मैल लिए जो होते हैं, कान साफ करने के चक्कर में पर्दा ही साफ कर देते हैं कई बार। इसी तरह दिवाली पे पटाखे, इस तरह की चीजें जो शोर करती हैं, उनसे बच के रहें,
1: यानी कि उनसे दूर रहें,
0: उनसे
1: और
0: दूर रहें।
1: जब कभी भी आपको कुछ परेशानी हो, कोई सुनने में दिक्कत हो, अच्छी तरह से सुनाई ना दे रहा हो या फिर कम सुनाई देता हो, लगता है कि आपको कुछ बहरापन सा महसूस हो रहा हो, तो आप इसकी नियमित जांच कराएं, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक दवाइयों का इस्तेमाल करें, नियमित जांच करते रहें, तो अपना कान यानी कि श्रवण की जो शक्ति, श्रवण शक्ति है, वो बिल्कुल सही रहेगा और सभी बातों को, सभी आवाजों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां दी कान के विषय में, बीमारियों के विषय में, इलाज के विषय में, लक्षण के विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति बहन,
3: जी
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे जानकारी। जानकारी का विषय था नाक, कान, गले की समस्याओं से बचाव और उनके आसान तरीके, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रामानुज बंसल, जो कि पूर्व नाक, कान, गला विशेषज्ञ हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर। और देखिए, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे भाइयों को वही, कान में अगर कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसके जरा भी विलम्ब ना करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो उसमें ही लोगों को ही परेशानी होगी।
3: बिल्कुल।
2: और देखिए, होता क्या है प्रीतिमान, के कभी कभी जैसे कि आपको बार बार जुकाम हो रहा है, इसकी पहचान भी बता दो कि एलर्जी हो रही है, तो उसका भी तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लें और उसी के हिसाब से दवाई का सेवन करें। और आजकल युवाओं में देखा जा रहा है कि ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे कान में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारे जो पर्दा है उसमें भी फटने का डर रहता है, क्योंकि तेज आवाज में सुनते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है।
3: और ये तो रही चलो कान से जुड़ी ही बात, जो कि बहुत ही जरूरी थी हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। और अब हम बताते हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो किस तरह से लाभ पहुंचाती हैं हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों को। तो ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी और सोवा रिगपा को बढ़ावा देना है और स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही मजबूत बनाना है।
2: बिल्कुल।
3: और बात करें अगर इसकी शुरुआत की, तो 2014 में हो गई थी इसकी शुरुआत, और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी लोग हैं उन्हें बहुत सस्ती और सुरक्षित और पारंपरिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: बिल्कुल।
3: और आयुष चिकित्सा पद्धति का विकास करना भी इसका एक मुख्य लक्ष्य है।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख उद्देश्य भी हैं, वो भी बता देते हैं। आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष सेवाओं का विस्तार, औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहन करना, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, आयुष डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है।
3: जी, और साथ में कहते हैं ना कि इस योजना के माध्यम से लोगों को ये भी जागरूक बनाना रहता है कि वो कैसे अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाएं, जिससे कि अगर उनकी जीवन शैली जो है अगर सही होगी, तो अगर उनका खान पान सही होगा तो उन्हें छोटी मोटी बीमारियां होंगी भी नहीं। तो पहला उपचार तो हम यही कह सकते हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय पर खाना पीना खाएं और जो मौसमी फल हैं उनका सेवन करें, सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर जाए और अच्छे अमाउंट में आपको आयरन मिले। तो अगर आपके शरीर में हर चीज की प्रचुर मात्रा होगी तो शायद ही आप कभी बीमार पड़ेंगे।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए कार्यक्रम, घड़ी भी इशारा कर रही है कार्यक्रम के साथ हमें विदा लेने का। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम, राम राम, और प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओ, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में आठवें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम,
1: राम।
0: मेरे साथ है प्रीति
1: और मेरे साथ हैं लोकेंद्र वर्मा
0: और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और इस कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और मनोरंजन भी होगा। प्रीति बहन
1: जी,
0: देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से ये एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1: जी।
0: और इसका मेन उद्देश्य है कि भाई पानी को किस तरह से सुनिश्चित करना है और किस तरह से उसका उपयोग करना है, उसके बारे में है ये योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर खेत को पानी।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि बोलते हैं कि हर बूंद का इस्तेमाल आपकी खेती बाड़ी के लिए हो, और ऐसी कई सारी तकनीकें हैं जिससे कि हर खेत को पानी मुहैया हो सके। पानी की बचत करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और अगर हम बात करें सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे कि ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, उसको भी बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल का संरक्षण करना और जल संचयन को प्रोत्साहित करना भी इसी योजना का हिस्सा है। और कहते हैं ना कि जब आप पानी की बचत करते हैं तो हर खेत को पानी मुहैया हो पाता है, जिससे कि उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो किसान है उसकी जो आय है उसको दुगुना करने का एक प्रयास भी सार्थक होगा।
0: बिल्कुल प्रीति बहन, जैसे कि इसके लाभ भी हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं। इसका पानी की सबसे पहले पानी की बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई लागत में कमी, सूखे की स्थिति में राहत और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना। तो ये तो रही योजना। और अपने भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं भजन। कलाकार हैं हरेंद्र नागर से।

0: तो अभी आपने सुना हरेंद्र नागर से ये भजन, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर जो हमारे अनुभवी किसान हैं उन्होंने क्या कहा, और ये बातचीत है संध्या गुप्ता की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में उन किसान भाइयों के अनुभव जानने की कोशिश करते हैं जो ग्रीष्मकालीन फलों की खेती कर रहे हैं।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रजेश है और डिस्ट्रिक्ट हाथरस के एक छोटे से गांव शहजादपुर से हूं मैं। हमारा 4 एकड़ का प्लॉट है और इस 4 एकड़ के प्लॉट के ऊपर करीब 70 बेल के पेड़ लगाए हैं। बेल के पेड़ लगाने के 2 मुख्य कारण थे, एक तो आध्यात्मिक कारण है, दूसरा जो है कि खेतों की मेड़बंदी इससे बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको खेत की मेड़ के ऊपर चारों तरफ हमने लगाया क्योंकि इसका फल गर्मियों में ही आता है। वात और पित्त की जो जितनी भी बीमारी है उसमें सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। लू लग जाती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं और प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 12 से 15 मीटर का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं। मेट के ऊपर होने की वजह से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी स्रोत होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे 70 पौधे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, साल में इसको जब बेचते हैं तो फल खरीदने वाले ठेकेदार हैं वो आते हैं खरीदने के लिए, तो प्रति पेड़ के हिसाब से हमें वो 1,500 रुपए देते हैं। तो हमारे 4 एकड़ की बाउंड्री से हमें 1,00,000 रुपए सालाना वो फ्री का हमको मिल जाता है। बाद बाकी जो उसमें क्रॉप लगाते हैं वो अलग बात होती है क्योंकि हमारी गौशाला है तो यहाँ पे गायों को फल बच जाते हैं। उन फलों को हम गाय को प्रतिदिन 1 लीटर की करीब शरबत के रूप में, जैसे है ना, फल इकट्ठे करते हैं तो एक जगह पे उनको छिलके के समेत उसको कूट पीस लेते हैं और उसके बाद में 1-1 लीटर जो है गाय को हम पिलाते हैं, तो इनसे गायों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। हार्डी क्रॉप माना जाता है इसको, और क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत लंबा होता है, इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है तो नॉर्मली इसमें किसी तरीके की बीमारी आती नहीं है। फलों में कभी थोड़ा बहुत महसूस होता है तो उसके लिए कुछ फल झड़ने वाली बात होती है तो उसमें बोरन वगैरह का स्प्रे कर देते हैं तो वो फल झड़ते नहीं है उससे। जहां तक पौधा फलत पे आने की बात होती है,

0: है तो पहले जो पुरानी प्रजातियां थी उनमें 7 से 8 साल लग जाते थे फलत पे आने के लिए, लेकिन अब कुछ नई वैरायटी आई हैं जिनमें 4 से 5 साल के अंदर फलत शुरू हो जाती है। हालांकि जो पहली फलत शुरू होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, पूरी फलत पे आने के लिए 7-8 साल तो कम से कम पौधे को लग जाते हैं, और फिर जितना वृक्ष बड़ा होता चला जाता है उतना ही इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। और मेरे यहाँ पे लगे हुए लगभग 21 साल हो गए, तो 21 साल में भी मैं ये देख रहा हूँ निरंतर इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो है थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा सा कच्चा फल तोड़ के ले जाते हैं जिससे कि ये खराब ना हो, और फिर उसके बाद इसको अखबार में लपेट के रख देते हैं तो इससे जो इसका क्लोरोफिल है वो न्यूट्रलाइज होके पीला फल पड़ जाता है और 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर फल पक जाता है, भारी फल होता है, कटीला वृक्ष होता है, पेड़ पे चढ़ के इसको तोड़ा जाता है। और जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो फिर जैसे त्रिपाल या पल्ली जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वो बना लेते हैं, तो 2 लोग उस पल्ली को पकड़ते हैं और ऊपर से उस फल को सीधे उस पल्ली के ऊपर या त्रिपाल के ऊपर डालते हैं जिससे फल को चोट ना लगे। तो ये एक एक पीस बड़ी सावधानी से तोड़ा जाता है और बहुत सावधानी से रखा भी जाता है। लगभग देश के हर एक स्टेट में ये फल आसानी से हो जाता है क्योंकि ना तो इसे सर्दी का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इस पे कोई एक्सेस गर्मी का प्रभाव पड़ता है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक विस्तृत हो जाती हैं जिसकी वजह से इसको अतिरिक्त कोई भोजन पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है। आपकी जो फसलें होती हैं उन्हीं से इसका पोषण भी होता रहता है। जैसे मुरब्बा या कैंडी वगैरह जो बनती है तो वो कच्चे फल की बनती है, तो वो फल जो है नवंबर दिसंबर लास्ट तक वो तोड़ लेते हैं उसको बिल्कुल कच्चा, और जिन लोगों को पका के तोड़ना होता है तो वो 1 अप्रैल के आसपास पे आके इसकी तुड़ाई शुरू करते हैं। इस वृक्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको ना कोई पशु डैमेज नहीं करता है। जो आजादपुर मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे बहुत अच्छी खपत होती है। इस समय पे बेल जो है प्रचुर मात्रा में मिलते भी हैं और पकते भी हैं यहाँ पे। इसका रेट रिटेल में अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपए 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक का इसका भाव रहता है, और किसान जो इसको बेचता है वो लगभग उसको 15 रुपए के आसपास 18 रुपए के आसपास का उसको भाव मिलता है।
1: मेरा नाम गगन सैनी, कस्बा कांधला, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। बागवानी करता हूँ और मेरी अपनी नर्सरी भी है। मैं ग्रीष्मकालीन सभी फलों की खेती करता हूँ जिसमें लोकाट, आड़ू, पीच और ये सहतूत हो गया, नाशपाती हो गई, ये मेरे मुख्य है। लोकाट हमारे पास काफी है और इसको तो बिल्कुल साधारण मौसम की जरूरत है। इसकी फ्लावरिंग तो सर्दी में आती है, स्टार्टिंग होती है, फल फ्रूट की शुरुआत होती है मार्च लास्ट में और ये मई के फर्स्ट वीक तक चलता है। इसकी सिंचाई जो है हमें फरवरी मार्च अप्रैल में ही जरूरत ज्यादा पड़ती है, बाकी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती इसको, और ज्यादा निराई गुड़ाई की भी जरूरत नहीं होती, कोई रोग बीमारी भी नहीं आती। एक तरह से ये ऑर्गेनिक होता है। नई नई वेरायटी पे मैं काम करता हूँ, 50-60 साल तक ये चल जाता है, फैलाव भी काफी होता है इसका। 32 फिट पे रखते हैं, 32x32 पे। लोकाट में 3 बार फ्लावरिंग आती है, किसी भी फ्रूट के पेड़ में 3 बार फ्लावरिंग नहीं आती। पेड़ पे चढ़ के ही तोड़ना पड़ता है, छोटी छोटी टोकरियां होती है हमारी, उनमें अखबार लगा के ही तोड़ते हैं। बड़ा नाजुक फल है वैसे तो, ये हमारा 7 kg का बॉक्स होता है, उसमें पैकिंग करके हम इसको सुपर मंडी, आजादपुर मंडी दिल्ली भेजते हैं। आड़ू को हम मल्टी क्रॉप में लेते हैं, जैसे हम नाशपाती का बाग भी करते हैं, आड़ू का बाग भी करते हैं, तो उसके बीच में आड़ू की 10 या 12 साल की आयु होती है, जैसे ही लोकाट या नाशपाती लगाते हैं 32 फिट पे तो उनके बीच में पेड़ डालते हैं इसके। आड़ू एक ऐसा फ्रूट है ये प्लांटेशन के दूसरे साल ही फ्रूट देना शुरू कर देता है, और ये 3-4 साल बाद 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक पहुंच जाता है इसका फ्रूट भी, और मार्केट में भी रेट काफी अच्छे मिलते हैं। लोकाट की मेरे पास विशेष किस्म है, इसकी मार्केट दिल्ली में ही ज्यादा है। खट्टा मीठा भी फ्रूट होता है, एक हमारे पास मीठा मीठा, दो वेरायटी हमारे पास है। जो खट्टा मीठे वाली वेरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, पेड़ से टूटने के 10 दिन बाद भी खराब नहीं होगी। आड़ू मैंने एक ऐसी वेरायटी तैयार की है जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पक जाएगी, हर 10 दिन बाद आड़ू पकता रहेगा, इतनी तरह की वेरायटियां हैं, और 10 जून में जाके लास्ट होगा। हाँ, सैतूत भी एक सोचने का विषय है। सैतूत के मेरे पास 5-6 प्लांट है, पिछले 4-5 साल से तो हम ऐसे ही तोड़ के दिल्ली मंडी ले गए थे, तो इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हम मजबूर हो गए, हमें बहुत प्लांटेशन करनी पड़ रही है, हर साल बढ़ा रहे हैं हम इसके प्लांट। 1000 रुपये kg तक हमें इसका रेट मिल जाता है, हर जगह हो जाएगा सैतूत। सभी को सैतूत की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक पैसे कमाने का बहुत बढ़िया साधन है। ये सर्दी में ही लगाया जाता है, दिसंबर के मंथ में इसकी प्लांटेशन की जाती है, और लगाने के दूसरे साल ये फ्लोटिंग शुरू कर देता है। मेड़ पर भी इसको लगा सकते हैं, बीच में भी खेती कर सकते हैं, कोई किसान बाग लगाने की कोशिश कर रहा है तो बाग के चारों तरफ भी लगा सकते हैं। एक पेड़ जड़ से लेके कम से कम 12-13 फीट तक फैलता है, 25-26 फीट का फैला हो जाता है इसका भी। 10-12 साल का है वो 1 से 2 क्विंटल तक आराम से देता है। जैसे शहतूत को हुआ, बिल्कुल एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। आधा केजी की पैकिंग करते हैं प्लास्टिक की टोकरियों में, जालीदार टोकरियां जिससे वो खराब भी नहीं होता मार्केट तक जाने में। रोग बीमारी तो कुछ नहीं आती इसमें। शहतूत में भी कोई स्प्रे नहीं करते हैं, माड़ू में कोई स्प्रे नहीं करते, लोकाट के बेसर कोई स्प्रे नहीं करते हैं। नाशपाती है, इसमें भी कोई स्प्रे नहीं करते हैं हम। नाशपाती में भी हमारे पास 4-5 वेराइटियां हैं। मुनाफा तो ये काफी अच्छा है। जैसे मेरे पास 4 एकड़ में ही है ये, तो इसमें 10-12 लाख रुपए की अर्निंग मेरी हो जाती है। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है।
2: मेरा नाम पुनीत प्रताप सिंह है, गांव कीठौर फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। लेकिन आलू के बाद मैं तरबूज भी लगाता हूँ, खरबूज भी लगाता हूँ। गर्मी वाली फसल है, गर्म जलवायु की, और इसमें बलुई मिट्टी ज्यादा कारगर रहती है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा निकलता है। दो तरीके से लगाते हैं, एक तो पूरे खेत का पलेवा करते हैं, वो उठाने के बाद उसमें हम हाथ से सीड जगह जगह जगह जगह गड़वा देते हैं। एक निश्चित दूरी 2 से 3 फुट की दूरी होती है, उस पर गड़वा देते हैं। और उसी तरीके से जो खरबूज का सीड है वो भी हम गड़वा देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है, अगर जहाँ पर पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हम 5 से 6 फुट पर एक खेत में नाली बनाते हैं, और वो नाली के किनारे किनारे उन सीड को लगवा देते हैं, और उसके बाद हम उसमें पानी देते हैं, जिससे क्या है कि हमारी पानी की बचत भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो मेरा क्षेत्रफल है वो तरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है और खरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है। जो काले कलर का जो तरबूज, हल्का सा अंडाकार जो आता है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बहुत मजबूत रहता है वो, तो उसी सीड को हमने चुना। फल का वजन लगभग 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक का होता है। वो भी हम पहले जो लगाते थे मिठास उसमें कम रहती थी, लेकिन अब जो हम सीड लगाते हैं वो उनकी मिठास भी बहुत अच्छी रहती है और मजबूत भी रहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा आसानी रहती है और मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तरबूज को तो हम उसकी हार्वेस्टिंग एक साथ कर देते हैं, उसमें आसानी ज्यादा रहती है। खरबूज के लिए तो हमें डेली या एक दिन छोड़ के उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तरबूज की जो बेल होती है 3 से 4 फल बड़े साइज के होते हैं, बकाया 2 से 3 फल छोटे साइज के होते हैं, और उनका वजन मान के चलिए आप 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक रहता है। लेकिन मार्केट में हमारा 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक के जो पैसे होते हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। और खरबूज पर लगभग एक बिल पर 7 से 8 फल इतने आ जाते हैं। तरबूज की हार्वेस्टिंग तो हमको पूरे खेत में एक ही बार करते हैं, और पकने का जो समय है लगभग सेम रहता है। लेकिन खरबूज के जो पकने का जो समय है वो अलग अलग रहता है सबका। एक बार खेत में जब हमारा फल तैयार हो जाएगा तो लगभग 15 दिन तक हम हार्वेस्टिंग उसकी करेंगे। बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, पूरब वाली हवाएं चलती हैं, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है, उस समय इसमें कीड़ा और ब्लाइट आने की संभावना रहती है। उसकी रोकथाम के लिए हम उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। जब मौसम ठंडा होता है उस समय हमारा फल भी ठंडा रहता है, तो उस समय हम उसको गाड़ी में लोड कर देते हैं। उसके बाद मार्केट तक जब पहुंचता है तो वो ठंडा रहता है। और खरबूज के लिए तो हमारी हार्वेस्टिंग ज्यादातर शाम को होती है, वो भी 3 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक होती है। लेकिन हमारा जो खर्चा केवल सीड का रहता है, और जो भी हम उसमें दवा लगाते हैं उसका रहता है, और निराई गुड़ाई होती है उसका रहता है। तरबूज का जो प्रति बीघा का जो खर्चा है 2,000 रुपये प्रति बीघा का आ जाता है, और खरबूज में सीड भी सस्ता आता है, उसका तो मान के चलिए आप केवल 1,000 रुपये प्रति बीघा का केवल खर्चा आता है ये फसल तैयार करने का। तरबूज के लिए जिस जमीन की और जिस पानी की जो जरूरत है, उसका पीएच जो है ना वो कम होना चाहिए, जमीन भी कम पीएच वाली होनी चाहिए। खरबूज के लिए अगर थोड़ा सा पीएच बढ़ा हुआ भी है, पानी का भी पीएच बढ़ा हुआ है, फिर भी फसल उसमें हो जाती है।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण कुमार सैनी, गांव बघरा, जिला मुजफ्फरनगर। हमारे यहाँ लीची और आम और अमरूद की खेती है, जो हमारा बाग है 40-50 साल का हो गया। 20 बीघे लीची की खेती है, आम की जो खेत है वो भी 20 बीघे की करीब है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में हो जाए लीची तो, पर दो मिट्टी जो है इसके लिए विशेषकर जो है लाभकारी हो। जो हमारे यहाँ तो नर्सरी से पेड़ है, जो सरकारी नर्सरी थी अब वहां से पेड़ लाए थे हम, और वहां से नर्सरी से ला के हमने जो है 40 बाई 40 से पेड़ लगा रखे इसके। और तो खैर गवर्नमेंट की स्कीम है बागवानी जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट अनुदान दे रही है फ्री। कुछ पेड़ हमारे 10 बीघे के जो है वो 40 साल के करीब है। कुछ पेड़ जो हमने नए लगाए वे करीब 10 साल के पेड़ हो गए।

0: मान लिया खेत में जब पेड़ लगाने हैं तो उसके लिए तैयारी करनी पड़े, 2 फीट का गड्ढा खोद ले गोबर का खाद और उसे जो खुला छोड़ दें। और तब करीब हमने लगाए बरसात के महीने में पेड़ लगाए हमने, पेड़ इसका मरता नहीं, सिंचाई की ऐसी आवश्यकता जो पड़ती है वो जैसे ही फल चने के बराबर हो जाए तो तब इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और करीब करीब 8 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 16 किस्म होती है इसकी, पर हमारे यहाँ जो है 3 4 किस्म है। देहरादून जो लीची होती है वो देसी बोलते हैं जिसे, एक कलकत्ती के नाम से है, फिर एक चाइनीज है मुजफ्फरपुर के नाम से, एक शाही भी है हमारे यहाँ, एक भैंसवाल है, 3 4 किस्म हमारे यहाँ है। आकार सबका अलग अलग है, स्वाद अलग है, सब इनकम भी सबके अलग अलग है। और वैसे तो इनकम में जो है आपकी देहरादून में जो है लीची वो भी बेस्ट है, बीदाना के नाम से लीची है, जो उसके अंदर बीदाना का मतलब है बीज जो है लौंग की तरह का ही होगा, और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा, मीठी लगा। ये उन्होंने भैंसवाल के नाम से, मोटा या आकार बहुत मोटी होगी लीची और उसमें गुद्दा ज्यादा होगा और बीज बहुत ही लौंग ज्यादा होगा, तो उसका भी स्वाद अलग है। वो मार्केट में जो है उसे भी पसंद बहुत करते हैं लोग। और इसकी जो है लगभग 20 दिन का ये फल है, 20 दिन में करीब करीब समाप्त हो जाए। तो हमारे यहाँ से 10 12 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, एक दिन पहले तोड़ाई कराई, अगले दिन सेल कर दें उसे, तो कोई खराबी की कोई बात नहीं आती लीची की, और सेल बहुत बढ़िया मुजफ्फरनगर में। 1 क्विंटल तक लीची लग जा एक पेड़ पर, हमारे यहाँ 100 150 पेड़ है लीची के, तो उसके निको की डंठल बहुत इसका मजबूत हो। लीची में दवाई का जो है वो कम है, इसके अंदर जो है सिर्फ एक दो स्प्रे हो गए हैं फंगिसाइड की, सुंडी की जो है 2 3 स्प्रे हो जाए तो वो भी सब कॉस्टली नहीं होती, तो इसलिए खर्च बहुत कम है। मतलब एक साधारण सी एक पल्ली सी ली और उसमें यह पैकिंग करा और भेज दिया, तो कोई खर्च की नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे आम आता है तो पेटी में भेज दो उसको, उसको पकाओ तो वो खर्च नहीं है उसके अंदर। सबसे पुराना जो हमारे क्षेत्र में बाग था वो हमारे यहीं था लीची के टाइम पे, 20 25 आदमी हमारे यहाँ था। पत्ते से ही तो उस लीची को तोड़नी पड़ती है, डंठल को थोड़ा पत्ता लेना पड़ता है उसके साथ में। संतुष्ट है, आम की अपेक्षा लीची बहुत इनकम का स्रोत है।
1: आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो अभी आपने सुना कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर ये जो हमारे अनुभवी किसान थे उनसे बातचीत, और ये बातचीत कर रही थी संध्या गुप्ता। और अगर हम आप बताना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज का कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
3: राम
2: राम राम।
3: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे गजल और कव्वाली से भरा इस कार्यक्रम का, तो आइए शुरुआत में आपको सुनवाते हैं पंकज उधास की ये गजल।

तो पंकज उदास की गाई गजल अभी आपने सुनी, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं पंकज उदास की ही आवाज में एक और गजल।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा का विकास करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने

0: परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने और कार पोलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसी पहल के अनुरूप श्रीमती गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने का आग्रह किया। इसी क्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रा की। मीडिया से बातचीत में डॉ सिंह ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
1: हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग इसके ऊपर सजग रहेगा कि आप जितनी सुविधा देनी है उतनी सुविधा लास्ट माइल सुविधा पर दे सके और उसी के ऊपर काम के लिए अपील भी कर रहे हैं।
0: मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्पित है। उन्होंने दिल्ली की जनता से इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण करने का आह्वान किया।
2: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे।
0: दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह नीति राजधानी में माल ढुलाई तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेज जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क यानी पैदल चलकर काम पर जाने की अवधारणा पर आधारित समुदायों का निर्माण करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति दिल्ली के शहरी परिदृश्य और क्षितिज को एक नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत मेट्रो और RRTS स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ में कमी आएगी, शहरी गतिशीलता बेहतर होगी और किफायती आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ आज एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के शैक्षणिक संस्थाओं को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना चाहिए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली यातायात पुलिस के प्रस्तावों और अवसंरचना से जुड़े कामों की समीक्षा भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। श्री संधू ने गलत साइड ड्राइविंग, बिना अनुमति पार्किंग और भारी वाहनों के अवैध प्रवेश जैसी समस्याओं को मिशन मोड में हल करने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार IEC और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सीबीएसई कक्षा

0: 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक के बाद सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की जनता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति और डबल इंजन सरकार के सुशासन को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कीरोडिमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भ्रमण करने के लिए आए छात्रों का विधानसभा परिसर में मार्गदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने इतिहास, कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में विधानसभा की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में एक जनसुनवाई के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक IP कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय है पेटेंट से उत्पाद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में IP व्यवसायीकरण में तेजी लाना। श्री कृष्णन ने कहा कि देश आज विकसित भारत की परिकल्पना की दिशा में नवाचार यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना सुबह लगभग 9:54 पर मिली। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी DB मुखर्जी के अनुसार विभाग की 28 गाड़ियां मौके पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डिंग में काम करने वाले किसी मजदूर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
2: हमारे कोई भी कर्मचारी जो है इंजर्ड नहीं हुए हैं। तक जो हमें सूचना मिली है कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है। बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग सेफ नहीं है और

0: आसपास की फैक्ट्रियों को बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, किसी भी फैक्ट्री में जो है आग नहीं पहुंची है।
1: दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े ड्रेन से 76% गाद निकाल लिया गया है। आधुनिक मशीनों, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में शामिल दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन भी जब्त किया गया है। और अब दिल्ली में मौसम। राजधानी में आज सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 40 से 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा विकसित करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

शुद्ध चित्रा और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। और साथ में श्रोताओं, अब ये भी सोचिए ज़रा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले ही नहीं हों, लेकिन एक मुलाकात में ही आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया हो जैसे कई वर्षों या जन्मों का रिश्ता हो। इस एहसास को महसूस कीजिए और सुनिए अगला गीत।

उम्मीदों से आगे की कहानी जब आप लिखने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे किस्से भी इतनी गहराई तक उतर जाते हैं मानो सागर भी छोटा पड़ जाए। और श्रोताओं, जब कुछ खास लिखकर आप अपनी यादों को संजोते हैं ना, तो फिर वो वक्त बीत जाने पर दिल से आवाज निकलती है कि ये तो उन दिनों की बात है।

ये उन दिनों की बात है। श्रोताओं, कई बार कई मौके ऐसे आते होंगे जब आप भी कोई किस्सा याद करते होंगे और बड़ी ही आसानी से कहते होंगे कि ये तो उन दिनों की बात है। कितना मज़ा आता है ना बीती बातों को जब हम याद करते हैं, गुदगुदी सी महसूस होने लगती है। ये यादें भी ठीक उसी तरह होती हैं जैसे बड़े होने पर बचपन की तस्वीरों को देखना। हम खुद को एक आईने में पाते हैं। खैर, बचपन हो या फिर बड़प्पन, हर वक्त कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा होता ही है जो दिल की बातें जानता ही है।

श्रोताओ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

अब दिल की बातें कौन जाने भला, वही ना जो आप संग साए की तरह रहता है और किससे कहानियों को कहता है, सुनता है। यही तो वो खूबसूरत प्रेम कहानी होती है जिसे आप अपने हमसफर संग लिखते हैं, गुनगुनाते हैं। प्रेम कहानी में मज़ा तब और भी बढ़ जाता है जब आपका साथी आपसे कहे कि मुझे कुछ तुमसे है कहना। क्या कहना है, तो चलिए सुन लेते हैं।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में चीनी कम है फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओं, ये जो कई सवाल है ना कि दुनिया ऐसी क्यों है, बातें हवा क्यों है, पूछिएगा अपने साथी से। और जानते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जब आपके पास ना हो तो फिर मीठी सी बात करने लग जाओ, क्योंकि ये जो मीठी मीठी बातें होती हैं ये तमाम सवालों का जवाब होती है। जी हाँ, कई सारे सवालों के जवाब मीठी सी बातों में ही छुपे होते हैं।

0: और श्रोताओं, सोल्जर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत से भरा ये कार्यक्रम गीतमालिका अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण

0: निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support.

0: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपए फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपए फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए फी क्विंटल की तजवीज है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के खराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीनकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुताल्लिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतादिद दिगर

0: उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असेंबली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते, जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रूपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर-ए-आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: مستمعين الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. إليكم برنامج التطورات الأخيرة.
1: Spotlight.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about key union cabinet decisions. And today we have with us economic analyst Shubhmoy Bhattacharjee to discuss about it. Shubhmoy, welcome to the show.
3: Happy to be here.
2: Shubhmoy, we all know that today there was this cabinet meeting which happened and a slew of decisions were taken. And we'll be discussing all of them one by one. But let's take up the first one, which is the union cabinet having approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Now, this is very significant, Shubhmoy, if we look at the current situation through which we are going through, especially when we talk about the West Asian crisis and also the energy crisis the world is facing all over. So this decision of the gasification thing makes it all the more important for the current times. How do you see it? And before you answer that, let's listen into the minister what he had to say about it.
4: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था. उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है. कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा. 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा. प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे. हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट हो पाए. 5,000 रुपीज का कैप एक कैटेगरी के लिए, 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप. जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Ibrahim. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy, the MSP will be 2461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2900 rupees, and for Tur, it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad, Sarkhej, Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches yesterday at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. PM Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the PM himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the PM's appeal, UP Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi CM Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy CM Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary.

0: The two-day BRICS Foreign Ministers' Summit begins in New Delhi today. Ahead of the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held bilateral meetings with his counterparts from several countries, including Russia, South Africa, Brazil, Maldives, and Chile. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi has also arrived in New Delhi to take part in BRICS Foreign Ministers' meeting. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting, which will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today. They will also call on PM Modi. Government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation, CBI, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, DOPT, the Appointments Committee of the Cabinet yesterday gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा, ओल्ड सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, गोल्डन एरा यानी गीत सुनहरे, हिंदी फिल्म, गीत, संगीत, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम वाकई गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए सोने जैसा ये खूबसूरत कार्यक्रम होता है। एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं होती हैं, जो रेयर सॉन्ग्स होते हैं। आज भी न जाने कितने हजार लोग, लिसनर्स या श्रोता साथी सुनते हैं, और रात को ही नहीं 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी कार्यक्रम सुनता ही है वाकई। क्योंकि पुराने जितने भी साथी रहे हैं इस जीवन में, आज भी जो बाकी रह गए हैं, तो वाकई उनका मन बिना गीत सुने रहता ही नहीं है, है ना? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है उन गीतों में। एक से एक बेहतरीन गीतकार, संगीतकार, अदाकार, अदाकारा, न जाने कितने ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फनकार हैं, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाओं का निर्माण करते आए हैं। तो आज भी वो गीत वाकई बहुत ही सुनहरापन देता है, अपनापन देता है। ऐसा लगता है कि वो गीत आपका नहीं, हमारा है, है ना? तो आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं हम। स्वागत है सभी साथियों का इस बेहतरीन कार्यक्रम में। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जी हाँ, फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़, मार्मिक लाजवाब गीत। बैजू बावरा फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार रहे शकील बदायूं ने और संगीत था नौशाद का। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जी हाँ साथियों, अभी सुन रहे थे बहुत ही प्यारा गीत ठंडी हवा के झोंके, भाई बहन फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में सुंदर रचना। भाई बहन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

धक्कन ढोंढ।

0: जी हाँ श्रोता साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत। साथियों, इन्हीं गीतों के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, जी हाँ, गीत बहार, म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप, जी हाँ, बिना रुके, बिना किसी हडल के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम गीत बहार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर खूबसूरत रचना।

0: बस और नहीं
1: प्यार, प्यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं। सारी महफिल जान ले कि हम किसी से कम नहीं।
2: ये तो वही है।

ना अपना नाम बताती है और ना पता। लेकिन मैं जनता के सामने और सब अफसरों के सामने भगवान को साक्षी बनाकर ये ऐलान करता हूं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। ये मुबारकबाद उधर क्यों दे रहे?

हुकूमत पैसा रुपया कुछ भी काम ना आए। अरे तन में मन की बीन बजे तो काम

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है और सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल, रात खामोश थी।

अभी आप सुन रहे थे हरि हरन की आवाज़ में गजलें, और लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आपको देखकर, ये गजल आपके लिए।

0: ये आवाज़ में इस गज़ल के साथ ही आज का गज़लों का ये कार्यक्रम होता है यहीं संपन्न आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार हैं M. चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया है रागम शुभा अंतवरली जो रूपकम ताल में निबद्ध है। आपके साथ घटम पर संगत किया है सुकन्या रामगोपाल ने और संगीत दिया है मथुस्वामी दीक्षितर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है M. चंद्रशेखरन का वायलिन पर राग शुभ पंतवरली।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वालन वादन। कलाकार थे एम चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया रागम शुभ पंतुवरली, जो रूपकम ताल में निबद्ध था।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आज बृहस्पतिवार है। शक्सम्मत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योग होगा गोमुखासन। स्वररंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हर्षवर्धन का बांसुरी वादन। आज आप प्रस्तुत करेंगे राग ललित। 6:10 का समय रहेगा वंदना का। 6:40 पर सुनेगा चिंतन चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकण का भाग 55।

रात 10 मिनट पर संगीति का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे सत्येंद्र नाथ। गीतो भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:30 बजे। 8:45 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संतूर वादन, कलाकार होंगे पंडित अभय रुस्तम सोपोरी। 9:15 पर सुनेगा उद्योग पत्रिका कार्यक्रम और 9:30 बजे मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे। आज प्रस्तुत करेंगी हरजीत कौर। 10:10 का समय रहेगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनेगा।

0: 11:10 पर स्वरांजलि ये कार्यक्रम आज आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गिटार वादन, कलाकार होंगे सलील भट्ट और तबले पर रहेंगे अभिषेक मिश्रा। 12:10 पर समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। एक बजकर 10 मिनट पर सुनेगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म रहेगी बेताब। और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के कलाकार होंगे नसीर हुसैन। 9:00 थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज ढोलेरा सेमी हाईस्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार

गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
1: किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया
2: अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन
0: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal, for Jowar hybrid it will be 4,023 rupees per quintal, for Bajra the MSP will be 2,900 rupees and for Tur it will be 8,450 rupees.

एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी, जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे